0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: चांदनी रातें
0: अब सुनिए।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

and number one radio station. Radio Olive. 106.3 FM. Ab suniye.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

कैसे नहीं होगा आप लोगों को जो है एंटरटेन करने के लिए, तो दिल को राजी हम जबरदस्ती करेंगे अगर वो मानेगा नहीं तो। हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी आपके लिए जो है ये बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखिए यार, इस वक्त मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लगेगी आपको, क्योंकि क्या है ना कि जो इंसान सुबह सुबह हर रोज़ नहीं उठता, उसको अचानक से आप बोलो कि आप कल से आपको मॉर्निंग में जो है लोगों को एंटरटेन करना है, तो पहले तो खुद को उठाना एंड फिर ऑफिस आना एंड फिर एंटरटेन करना शुरू करना, उसमें टाइम लगता है। अभी क्या है, मेरा ब्रेन तो आपसे बात कर रहा है लेकिन मेरी बॉडी को अभी आदत नहीं हुई है। सो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि कैसे इस चार घंटे के शो में मेरी आवाज़ आपको अलग अलग वर्जन्स में दिखेगी, सुनाई देगी एटलीस्ट। सो देखिए, वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करते जाइए, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग वाले गाने आपकी बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले आई हूँ। इस वक्त जो है स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 6:09 एंड जो है आई एम श्योर आप लोग जो है बढ़िया तरीके से तैयार हो गए, अपने ऑफिस के लिए निकल रहे होंगे या कुछ लोग अभी तैयार हो रहे होंगे, सो या बच्चों को तैयार कर रहे होंगे स्कूल के लिए। तो गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि मौसम कैसा रहने वाला है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सुबह सुबह करनी चाहिए जिससे आपका दिन जो है बढ़िया जाए, एंड इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है मुसाफिर कैफे का एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो है वो आपको इंजॉय करना चाहिए। सो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर, गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स, क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ।
1: फुटवेयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स, सब पर मैसिव सेविंग्स।
0: क्लॉक इज टिकिंग, ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक। डोंट जस्ट शॉप, स्कोर बिग। आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर।
2: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
3: मैं हूं अनिल कपूर।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: हाँ जी, देखिए ऐसे ही कुछ गाने होते हैं जो आपका मूड बना देते हैं कि यार गाइस शादी तो देखो कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर आपको ये रियलाइज होता है कि यार सिर्फ मूड के चक्कर में शादी नहीं की जाती। हाँ जी, ऐसे मूड को देख के जो है आप शादी नहीं कर सकते, बिकॉज मूड तो बदलता रहता है ना, एंड शादी जो है वो निभाने वाली चीज़ है, उसको लाइफ लॉन्ग जो है वो आगे लेकर जाना होता है, साथ साथ में आगे बढ़ना होता है। सो ऐसे ये कि अरे यार उम्र हो गई है, अरे यार अब मूड हो रहा है, अरे यार फैमिली वाले ना प्रेशर दे रहे हैं तो जो है कर लेते हैं शादी, ऐसे तो कभी शादी मत करना, क्योंकि देखो मूड का क्या है, मूड ना बिल्कुल मौसम की तरह है, फैमिली का प्रेशर बिल्कुल मौसम की तरह है, ये अलग अलग टाइम पर बदलता रहता है। जैसे इस वक्त मौसम बदल रहा है, कल जो है मैंने इतना खुश हो गया ये सबको बोल दिया था कि यार सर्दियां आ गई हैं फाइनली, ये जो तारों के इधर उधर जाने की वजह से जो है अब मौसम पूरी तरीके से बदलने वाला है, एंड हम फाइनली 20s वाले टेम्परेचर में आ गए हैं, 40s वाला टेम्परेचर जा चुका है, आज का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 41 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, ठीक है कुछ दिन और वेट करेंगे फिर पक्का से मौसम बहुत बढ़िया हो जाएगा, मैं तो इसी होप में बैठी हूँ। देखो सो इस वक्त करंट टेम्परेचर अगर मैं आपको बताऊँ तो 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस है जैसे मैंने आपको बताया, एंड लोएस्ट टेम्परेचर देख के मुझे थोड़ी सी खुशी हुई क्योंकि 29 डिग्री सेल्सियस है। सो यानी दिन के किसी टाइम पर तो हमें ऐसा लगेगा कि यार देखो चलो अब टेम्परेचर जो है वो अच्छा हो गया। वैसे बाहर ह्यूमिडिटी नहीं है, जब मैं अभी आई तो ह्यूमिडिटी नहीं थी, प्यारी प्यारी हवा चल रही थी, उतनी ज़्यादा धूप नहीं थी, लेकिन सूरज चाचू ना अपनी ब्राइटनेस धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, तो आप जो है सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, एंड बाकी ये जो थोड़ी बहुत गर्मी है इससे जो है डील करने के लिए कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए। बाकी तैयार अगर हो गए आप तो थोड़ी सी देर में आज कोट ऑफ द डे की जो है बात करेंगे। बाकी आप सब 3311063 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि यार आपका दिन जो है वो कैसे शुरू कर रहे हैं आप, या बस हाय हेलो गुड मॉर्निंग कह दीजिए मुझे 3311063 पर। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

बस यही चीज बिन तेरे क्या है जीना, मैं अपनी चाय को बोलती रहती हूँ क्योंकि उसके बिना मेरा जीना पॉसिबल ही नहीं है। जी, आपकी कौन सी छोरी, आपकी कशिश जो है आज ये लेकर आपके लिए बिंदास मॉर्निंग। एंड इस वक्त जो है मेरा फोन जो है वो वाइब्रेशन मोड पे एंड कर रहा है क्योंकि मैंने ऑर्डर करी थी चाय मेरे लिए, क्योंकि यार मेरी ना आंखें नहीं खुलती है, मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती बिना चाय के। एंड आज सुबह जो है मैं लेट हो गई उठने में एंड मैं जो है बना नहीं पाई चाय किसी वजह से, आलस की वजह से बेसिकली। सो मैंने सोचा कि मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। सो भैया से हम बाद में बात करेंगे जो मेरी चाय आ गई है, लेकिन सबसे पहले मैं जुल्फी जी का जो एक मैसेज है वो पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि हमें हमारे दिन की शुरुआत करनी है। सो सबसे पहले तो मैं अपनी एक बात से आपको जो है बताना चाहती हूँ कि देखो, आपको आपकी लाइफ में जिस चीज़ की आदत है वो मिले या ना मिले, लाइफ गोज ऑन। ठीक है, बिल्कुल जैसे मेरे साथ चाय के लिए हो रहा है, सो लाइफ गोज ऑन। मुझे लगा था कि मैंने ऑर्डर कर दिया चाय तो वो मेरे शो शुरू होने से पहले आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। सो अब मैंने शो शुरू किया ना, तो बस ऐसी अगर कुछ चीज़ है जो आपकी लाइफ में मिसिंग चल रही है और आपको लग रहा है यार इसके बिना तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो गाइज कोई बात नहीं। पहले तो जुल्फी जी का एक कोट है वो पढ़ लेते हैं कि वेलकम टू द फ्रेश मॉर्निंग विद अ स्माइल ऑन योर फेस, लव इन योर हार्ट, गुड थॉट्स इन योर माइंड एंड यू विल हैव अ वंडरफुल डे। बस एग्जैक्टली, देखिए वर्ड्स अलग हैं, इन्होंने अच्छे वर्ड्स में किया है, मैंने थोड़ा सा नॉर्मल वर्ड्स में कहा था, बट बात सही है। जुल्फी जी थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। एंड संदू जी ने जो है वो भी लिखा हैप्पी वाली मंडे मॉर्निंग जी हरपाल संधू फ्रॉम दुकान। सो थैंक यू सो मच संधू जी, कैसे हैं आप। उसके बाद श्रीकांत जी ने जो है शशिकांत पाटिल जी ने जो है गुड मॉर्निंग कहा है, गुड मॉर्निंग जी। उसके बाद गुड मॉर्निंग टू समवन हु नेवर फेल्स टू मेक इवन द मोस्ट ऑर्डिनरी डे फील अ लिटिल मोर फन एंड एक्साइटिंग व्हेन द रेन्स पोर डाउन, आई होप टुडे गिव्स यू अ प्लेंटी ऑफ रीजन टू स्माइल। थैंक यू सो मच नजीमुल्ला जी, थैंक यू सो मच, आपने सच में मेरी मॉर्निंग जो है वो अच्छी बना दी, बिंदास बना दी है। बाकी आप लोगों के लिए जो है अमेजिंग वाला गाना प्यार इम्पॉसिबल मूवी से आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए ये गाना। 3311063 पर आप हाई हेलो गुड मॉर्निंग मुझे भेज सकते हैं। बाकी मैं जरा चाय जो है वो पीकर आती हूँ, स्टे ट्यून्ड, कहते रहो जियो बिंदास।

0: बार समझाऊं बी पराग जी आपको, कितनी बार मुझे समझाना पड़ेगा कि तू तू तू नहीं आप कहा जाता है, जैसे आपकी कशिश। हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी कशिश जो है आज की आपके लिए लेकर 106.3 रेडियो ऑरिफ पर बिंदास मॉर्निंग, जहां पर आपकी बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, अगर मैं बात करूँ ना स्ट्रेस की, तो असली स्ट्रेस जो है वो ऑफिस जाने के बाद जो है वो शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार कुछ काम नहीं है, फिर भी कुछ तो भारी सा लग रहा है ना, सारा काम हो चुका है, सारे टास्क फिनिश हो गए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो छूट रहा है, इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है, इतना प्रेशर क्यों है मुझ पे। सो उस प्रेशर से डील करने के लिए जो है मैं आपके लिए एक तरीका लेकर आई हूँ, जिससे आप अपनी मीटिंग्स को फन बना सकते हो, अपने कलीग्स के साथ अपनी कॉन्वर्जेशन को फन बना सकते हो, और बहुत अच्छा आइस ब्रेकर भी हो सकता है ये। अगर आप सुबह जो है गुड मॉर्निंग कहते हो, तो उससे बढ़िया है कि आप लोग जो है कुछ सिलेक्टिव मीम्स जो है वो चुन लीजिए आप सबकी आपस में, एंड मीम्स में जो है कॉन्वर्जेशन करने की कोशिश कीजिए। सो काफी यू नो लाइट माहौल रहेगा ऑफिस का, तो स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप देखिए, सबके यहाँ पर जो है सबकी जगह पर ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज काफी ऑफिशियल सेटअप भी होता है कई बार। सो आपके लिए जो है आपकी डेस्क जो है उसको डी क्लटर करना इज द बेस्ट थिंग। जैसे हम स्ट्रेस होता है हमें और घर पर हम सफाई करना शुरू कर देते हैं, आप अगर अपनी डेस्क को जब भी स्ट्रेस होगा तो नए तरीके से अगर उसे डेकोरेट करेंगे तो आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम होगा। अब आप बोल रहे हैं कि कशिश यार हर रोज डेस्क पे ऑर्गेनाइज करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो आपको बस अपनी चेयर पर जो है ऐसे पीछे टिक कर बैठना है, लंबी सी सांस लेनी है, एंड अपनी आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। एंड आपको जब भी आपको स्ट्रेस हो, तो आपको एटलीस्ट 3 मिनट के लिए कोई भी एक चीज़ जो है उसका पैनल बनाना है। बेसिकली अगर आप मन में सोच लीजिए कि यार मुझे ग्रीन चीज़ ढूंढनी है, तो आपको आपके आसपास उस चेयर में बैठे बैठे आप जितनी ग्रीन चीज़ें स्पॉट कर सकते हैं, आपको मन में उनकी लिस्ट बनानी है, और ये आपको 3 मिनट तक करना है, एंड 3 मिनट बाद आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, एक बार जरा करके मैं भी देखूंगी। वैसे मुझे स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि मेरा ऑफिस इतना वाइब्रेंट है, मैं आप लोगों से बात करती हूँ। सो आप लोग ट्राई कीजिए, अगर आपको स्ट्रेस होता है तो 3311063 पर मुझे जरूर से बताइएगा। फिलहाल ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ ये गाना जो है वो एंजॉय कीजिए, और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Song of the Year.

0: इनमें की यहाँ कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

कहें और मैं ना सुनूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं कहूं और आप ना सुने, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि अभी ना मैं आपके लिए बैकबोर्ड स्टोरी वाला क्वेश्चन लेकर आ गई हूं, जहां पर आपको जवाब देना है मेरे आसान से सवाल का। हाँ जी, आपकी कौन सी छोरी आपकी कशिश जो है लेकर आ गई है यहाँ पर बिंदास मॉर्निंग, जो यहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग मॉर्निंग्स को जो है बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, आज का जो सवाल है वो बड़ा ही सिंपल सा है। आज जो है वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे जो है आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, सो क्यों ना कतर के आर्किटेक्चर के बारे में आपसे सवाल करूं, क्योंकि यहाँ पे आप चलते फिरते बिल्डिंग्स की स्टोरियाँ बना लेते हैं, फोटोज खींच लेते हैं, अप्रिशिएट भी कर देते हैं कि क्या बनाया है बनाने वाले ने। लेकिन क्या आपको बनाने वाले के बारे में कुछ पता है? बस यही वाली नॉलेज जो है आज आपकी हम चेक करने वाले हैं। सो आपको मुझे बताना है कि जो वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चरल डिजाइन आइकॉनिक म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट्स है दोहा के कॉर्निश में, उसे किसने डिजाइन किया है, आर्किटेक्ट कौन है? सो देखिए, थोड़ी सी चीटिंग आप कर सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फटाफट मुझे आंसर दे देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने गूगल से नहीं जो है पूछा है आंसर। सो आपको बस मुझे बताना है, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट जो दोहा में है कॉर्निश के पास है, उसका डिजाइनर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है? सो बस म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट के आर्किटेक्ट का नाम आपको मुझे बताना है। आज वर्ल्ड आर्किटेक्ट डे के दिन हम कतर के आर्किटेक्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो जल्दी से 3311063 पर मुझे उन महाशय का नाम बता दीजिए जिन्होंने म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट्स को आर्किटेक्चरली इतना फेमस बनाया है, इतना अमेजिंग बनाया है, इतना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है। मैं हूँ आपकी कशिश, फिलहाल गाना तबस्सुम आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, सो वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए एंड आंसर दे दीजिए जैसे सुदेव कहा करते थे। पता चल जाएगा आज क्या 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और कशिश से कितने ज्यादा स्मार्ट है। सो वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए, मैसेजेस मेरे पास आने लग गए हैं, आप भी जो है अपना मैसेज जो है ऐसे सेंड करके लॉक कर दीजिए कि देखो हमें तो पता है कशिश कतर के बारे में। 3311063 इज द नंबर। फिलहाल तबस्सुम गाना एंजॉय कीजिए, मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

ऑफ कोर्स जी, मेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कि आंसर देना भी भूल गए लोग। आपकी कसूस हूँ मैं 106.3 रेडियो ऑलिव पर आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। एंड यहाँ पर हम बहुत सारा फन कर रहे हैं, वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे है आज। सो बस आज

0: का आर्किटेक्चर जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड मैंने आपसे पूछा था म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट्स जो है उसका आर्किटेक्ट कौन है, मतलब इतने अप्रिशिएट तो कर देते हैं आप हमारी कतर की ब्यूटी को, कतर के आर्किटेक्चर को, लेकिन क्या उसके पीछे की हिस्ट्री पता है, क्या पता है कि इस आर्टिस्ट इसके पीछे का आर्टिस्ट कौन है। वैसे आर्किटेक्ट्स भी जो है आर्टिस्ट होते हैं, इन्हें भी आर्टिस्ट की कैटेगरी में जो है वो डालना चाहिए, क्योंकि हम जो है पेपर फोल्ड करके ओरिगेमी करने वालों को तो आर्टिस्ट बोलते हैं, एंड वो है भी, लेकिन इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, मतलब ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए एंड यू नो एस्थेटिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाना कितना मुश्किल है। मतलब आपने कभी पत्तों का जो है वो ऐसे, मतलब वो जो कार्ड्स होते हैं उन कार्ड्स का आपने कभी मतलब एक पहाड़ बनाया है, कैसल बनाया है, ऊनो कार्ड्स का कभी बना के देखो, आपको पता चलेगा कितना मुश्किल होता है कुछ भी बनाना। वैसे जो है हम बात कर रहे थे आंसर की, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बिल्कुल सही सही आंसर जो है वो दिया है, पर मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि हम सबको एक और मौका देंगे। सो अभी भी आपके पास मौका है 3311063 पर, अगर आपने अभी अभी शुरू किया है हमें सुनना तो आप मुझे बता सकते हैं म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट्स के आर्किटेक्ट का क्या नाम है। सो नूरुल जी ने जो है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है, एंड उसके बाद जो है शबी आमिर जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, उसके बाद एक और सर हैं उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया लेकिन अपना नाम नहीं लिखा है, तो मैंने आपसे जो है अपना नाम ज़रूर पूछा है, सो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद हेम कुश जी ने भी कुछ कहा है, सॉरी फॉर चीटिंग। देखिए मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो ये कह देते हैं कि देखो देखो आंसर ये है लेकिन हमने जो है देख के बताया है। इन पे अलग सा भरोसा होता है यार मुझे कि ठीक है पता नहीं था लेकिन एटलीस्ट मुझे मैसेज करने के लिए उन्होंने मेहनत तो करी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच जी हेमकुश जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वैसे इनका नाम जो है वो कुछ और है, सो प्लीज़ अपना नाम जो है वो मुझे एक बार ज़रूर से बताइएगा। आयशा जी ने भी बिल्कुल जो है सही सही आंसर दे दिया है, एंड एक आंसर जो है वो मुझे हंसने पे मजबूर कर रहा है, एंड ये आंसर जो है वो मुशीर आलम जी ने दिया है, मोहम्मद मुशीर आलम जी ने, और उन्होंने कहा है जी कशिश मैडम वो हमारे फूफा जी ने जो है डिज़ाइन किया था। देखिए आपके फूफा जी तो डिज़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पता है फूफा जी जो है वो अक्सर कलेश डिज़ाइन करते हैं फैमिलियों में, सो वो आर्किटेक्ट पता नहीं मैं कंट्रोवर्शियल हो जाऊंगी, मेरे घर वाले सुन रहे हैं इस वक्त, सो नहीं किसी और चीज़ पे बात करते हैं। चलिए आप लोगों के पास मौका है आंसर देने का बिंदास मॉर्निंग पर। आज मैंने सवाल ये पूछा था कि वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर कतर का आर्किटेक्चर जो है वो सेलिब्रेट करते हुए ये मुझे बताइए कि म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आज के आर्किटेक्ट का क्या नाम है। ये सब नाम जो मैंने आपको बताया इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है आज। आप लोग भी जो है एक मौका और लीजिए एंड मुझे आंसर दीजिए। हमारा जो अगला वाला गाना है इसके बाद मैं आऊँगी और सबके जो है नाम के साथ आंसर भी बताऊँगी। सो फिलहाल ज़बरदस्त हिट वाला गाना इन्जॉय करके आइए, वॉल्यूम बढ़ाकर। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड जी बिंदास।
1: अब सुनिए

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर, गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स, क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ।
1: फुटवेयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स, सब पर मैसिव सेविंग्स।
0: क्लॉक इज टिकिंग, ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक। डोंट जस्ट शॉप, स्कोर बिग। आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर।
2: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
3: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8 November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold Golden Diamonds.
4: Malabar Golden Diamonds Bindas Morning.
1: Malabar Golden Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें. Visit your nearest Malabar Golden Diamonds showroom now.
4: In association with
1: Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

0: वाली वाइब जो है आ गई है हंगामा मूवी के इस गाने के साथ। छोरी कशिश, यस कूल छोरी कशिश जो है आ गई है आपके साथ।
1: छोरी कशिश
0: अचानक से मेरा ऑरा माइनस हो गया यार, गाना बंद हो गया। पता नहीं ऐसी चीज तो मेरे साथ ही क्यों जाती है। वैसे कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग बिंदास मॉर्निंग, आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हो 106.3 रेडियो ऑलिव पर। एंड मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये पूछा था कि आज वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे है, तो कतर का आर्किटेक्चर जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड आप लोगों से पूछा था कि ये जो हमारा बहुत फेमस म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट्स है, इसे किसने डिज़ाइन किया है, इसका आर्किटेक्ट कौन है। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे बिल्कुल सही सही आंसर दिया है। शिप्रा डे जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, योगिनी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, एंड बाकी लोगों का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया था। एंड आंसर है ओके, इदरीस जी ने जो है गुड मॉर्निंग कहा है। गुड मॉर्निंग इदरीस जी, आज आप थोड़े से लेट हो गए मुझे ऐसा लग रहा है। ओके सो इन्होंने एक बहुत ही प्यारी फोटो मुझे भेजी है म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट्स की। एंड ये जो है ये काफ़ी अमेजिंग सा स्ट्रक्चर है। एंड इसके जो अगर मैं बताऊँ, इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो जो है अमेरिकन चाइनीज आर्किटेक्ट थे। एंड योगिनी जी ने बिल्कुल सही आंसर जो है वो मुझे दिया। एंड मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो आंसर के साथ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देते हैं। सो यस, ये अमेरिकन चाइनीज जो है आर्किटेक्ट थे जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें अराउंड द वर्ल्ड बनाई हैं। इनका नाम है LMP, यस PEI, ओके। एंड इन्होंने बहुत सारी अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाए हैं, एंड काफ़ी मेहनत भी की है और काफ़ी अमेजिंग एस्थेटिक्स के साथ जो है इन्होंने अपना सारा काम किया है। आप लोगों को देखिए यार, अगर आपने आंसर जो है मुझे कहीं से देख कर दिया है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन पॉइंट है वो आपको अवेयर करने का है, आपको ये बताने का है यार देखो इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट्स के बारे में जो है और अगर हम बातें करें तो ये एक ज्योमेट्रिक फोर्ट्रेस जो है वो लगता है। इसे ध्यान से देखो ना तो ऐसा लगेगा कि बुरखा पहने हुए कोई लेडी खड़ी है, लेकिन अंदर से दोहा स्काईलाइन का बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखता है। सो अगर अभी तक आप नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर से जाइएगा। फिलहाल जो है पैसा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, तो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ। थोड़ी सी देर में हम और बातचीत अपनी जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा।

0: Mom, see what I bought today. I bought a tomato plant, a lemon plant, and a mango plant.
1: A mango plant? Isn't that a mango tree? Anyway, why is everything so green? Where did you get all this?
2: Arey, we went shopping at Safari, didn't we? Safari has launched the Go Green, Grow Green promotion. He got really excited when he saw all the plants and arrangements there.
0: Yeah, it's so cool, Mom. There's a lot of flowering plants too. I picked out the best ones.
2: He selected each one himself. There are plenty more. We can go together sometime.
3: A wide variety of vegetable and fruit saplings, medicinal and ornamental plants, indoor plants, various seeds, plus garden tools, fertilizers, and everything else needed for gardening. All arranged at Safari starting October 5th as part of the Go Green, Grow Green campaign.
4: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
5: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
8: इन एसोसिएशन विद
7: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

सारा सुन के ना मुझे अपना क्रिंज वाला एरा याद आ जाता है, स्कूल वाला टाइम जो है वो एकदम से याद आ जाता है। वैसे स्कूल टाइम की बात करेंगे तो कुछ और भी है जो आज मुझे अचानक से याद आ गया। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कसुजन शो, आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। एंड मुझे पता नहीं क्यों आज अचानक से ओजोन लेयर की याद आ गई। ओजोन लेयर जो मुझे जो है ज्योग्राफी में पढ़ाई जा रही थी, एंड मैं अचानक से रोने लग गई थी कि ओजोन लेयर में होल हो रहा है। और अभी बिल्कुल फिक्र नहीं होती ओजोन लेयर की, क्योंकि लाइफ में कितनी सारी और प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। आप बताओ कि आपको कोई ऐसी बचपन की चीज़ है जो अचानक से याद आती है और फिर आपको लगता है ओ इस बारे में तो स्ट्रेस लेना ही भूल गए हम। 1063 जो है ये हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं 3311063। जल्दी से मुझे जो है आप मैसेज कर दीजिए। एंड फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है रेडियो से, इस पर तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ। और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

Yes guys, तू है champion और मुझे ऐसा लगता है कि ये perfect जो है background music कतर के लिए होने वाला है। ये चोरी हाँ जी, आपकी एक cool सी चोरी कसूस जो है आ चुकी है बिंदास मॉर्निंग आपके लिए लेकर on 106.3 रेडियो ऑलिव। अब देखिए यार, ये गाना जो है मैंने क्यों कतर को डेडिकेट किया ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब मतलब एशियन गेम्स 2026 जो चल रहे थे वहाँ पर फाइनली जो है वो फ्लैग जो है वो दे दिया गया है कतर को। हाँ जी, दोहा 2030 में जो है एशियन गेम्स जो है उसे होस्ट करने वाला है, एंड दोहा बेस्ट चॉइस इसलिए क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ज़रूरत पड़ती है उसके लिए किसी भी ऐसे इवेंट को होस्ट करने के लिए, एंड कतर के पास वो ऑलरेडी है। सो ज़ीरो न्यू कंस्ट्रक्शन होने वाला है एंड रीपर्पस किया जाएगा जितनी भी लेगेसी साइट्स हैं। सो जैसे अभी भी जो है जब भी आप किसी से बात करो, किसी प्लेयर से बात करो फीफा के लिए स्पेशली अगर बात करो, तो हमेशा ये कहा जाता है कि यार कतर से बेटर और कहीं नहीं हमें दिखा था। सो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि अब एशियन गेम्स में भी यही होने वाला है, आगे धीरे धीरे करके जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारी बातें जो है वो हमें धीरे धीरे पता चलेंगी क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं। वैसे इसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि एक अमेजिंग गाना जो है वो वेलकम सॉन्ग बेसिकली जो है हमें इंजॉय करना चाहिए, इसीलिए पिया घर आया, मतलब उतना हैपनिंग सॉन्ग नहीं है ये लेकिन नाम थोड़ा सा हैपनिंग है। सो इसे ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर आप इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और थोड़ी सी देर में ऑल ऑफ अपडेट्स आप एंजॉय करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी ओपन दास।

0: बेहतरीन आर्किटेक्चर की कोई बात करे और वो कतर का जिक्र ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए आज चलते हैं कतर के आर्किटेक्चरल सैर पर।
1: दोस्तों, ये है म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, जिसे फेमस आर्किटेक्ट आई एम पे ने डिजाइन किया है। बाहर से देखने में ये किसी ज्योमेट्रिक फोर्ट्रेस की तरह लगता है, लेकिन ध्यान से तो देखो, ऐसा लगता है जैसे बुर्का पहने कोई लेडी खड़ी हो। इसके अंदर जो दोहा स्काईलाइन का व्यू है वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल है।
0: वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर देखो कतर का आर्किटेक्चर रेडियो ऑलिव की नज़र से।
2: बिंदास मॉर्निंग।
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: Radio. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: अपने loved ones को पैसे भेजना हुआ और भी इजी. कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में. फास्ट, इजी और रिलायबल. विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
4: इन एसोसिएशन विद
3: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लाइबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

ये गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश ये छोरी कशिश एंड जो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग का जो है अमेजिंग और बिंदास बनाने की बिड़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, ये जो गाना भी हमने इंजॉय किया ना, ये मैं सुन रही हूँ आई थिंक बहुत सालों बाद। मैंने जो है जब मैं KG 2 यानी किंडरगार्टन में थी, तब मैंने इस पर जो है परफॉर्म किया था अपने समर वेकेशन पर एंड मुझे काफ़ी मज़ा आया था। लेकिन उसके बाद मैंने इस गाने पर डांस फिर नहीं किया बिकॉज मुझे उसी टाइम की याद आने लग गई थी। वैसे एक बात और है जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, जो कि मुझे नहीं पता कि आपको कितनी इंटरेस्टिंग लगेगी, लेकिन मुझे कतर में इस वक्त जो है हो चुके हैं करीबन 8 महीने या ज़्यादा शायद, लेकिन मैंने अभी तक बीच गई ही नहीं हूँ, मैं किसी भी बीच पे विजिट नहीं किया है। एंड कितने अमेजिंग बीचेस हैं हमारे कतर में, ये तो आपको पता ही है। सो बीचेस पे जो है टूरिज्म बढ़ाने के लिए एंड वहाँ पर फुटफॉल जो है वो बढ़ाने के लिए बेटर फैसिलिटीज़ जो है वो दी जा रही है। यस, आई मतलब मैंने सच में इसमें थोड़ा सा रिसर्च किया। सो मिनिस्ट्री ने एंड कतर टूरिज्म ने जो है ये फैसला लिया है कि अब बीच पे जो है लोगों का फुटफॉल बढ़ाने के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए बीच फैसिलिटीज़ और कोस्टल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है अच्छा करा जाएगा एंड अब वहाँ पे जो है फैमिली एरियाज़ को अपग्रेड किया जाएगा एंड बेटर फैसिलिटीज़ जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। यानी अब जिन बढ़िया बीचेस पे आप जाया करते थे कतर में, अब वहाँ पर आप जाएंगे क्योंकि मौसम अब अच्छा हो रहा है, तो ऑफकोर्स अब आप बीच पे जाएंगे। सो अब आपको और ज़्यादा बढ़िया फैसिलिटीज़ मिलेंगी एंड कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया मिलेगा। सब कुछ धीरे धीरे हौले हौले बढ़िया हो जाएगा। बस इसी बात में मुझे ऐसा लगता है कि हौले हौले वाला गाना रब ने बना दी जोड़ी से आर आपकी रेडियो सेट पर, इसे आपको वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय करना चाहिए। मैं हूँ आपकी कशिश, थोड़ी सी देर में आऊँगी और ज़्यादा खबरें लेकर, चटपटी वाली बातें लेकर। सो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: Activities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
2: Say a halo dhu with Radio Olive and A2Z Event and Trading Catering.
3: Doha Walo, get ready to glow, glam up and groove. We are bringing you the ultimate fashion fusion musical night. Throw on your brightest, most colorful festive ethnic wear, grab your favorite accessories and let's light up the dance floor.
2: Aur ultimate music ke liye, saath hogi Bollywood ki sensational star, Ishita Vishwakarma Lal.
3: Get ready for Desi Beats, Chatpate Street Food and full-on vibes this Friday, 9th October at Regency Hall,
2: 6 p.m. onwards.
3: Book your ticket on Snoonu City or for more info, call 3328-3393.
2: सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
6: इन एसोसिएशन विद
5: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी

0: देखिए गाने का नाम भले ही बुरे बुरे था, लेकिन हम किसी भी बुरी बुरी बात के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सारी अच्छी अच्छी बातों के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, आपकी कौन सी छोरी कैसे जो है वो आ चुकी है, एंड बहुत ही अमेजिंग बातचीत जो है वो हम करने वाले हैं। एंड जितने भी ईवी ओनर्स हैं इस वक्त, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि कतर में बहुत सारे नए ईवी स्टेशंस जो है वो खोले जा रहे हैं, एंड उनकी लोकेशन भी जो है वो आपको ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा, ताकि और ज़्यादा हम सस्टेनेबल और ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें जो है उसके लिए हम आगे बढ़ सकें। सो देखिए, जितने भी ईवी ओनर्स हैं या जो भी लोग हैं जो ईवी लेने का सोच रहे थे, उनके लिए अब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आसान होने वाली हैं, बिकॉज ईवी स्टेशन जो है अब आपको हर थोड़ी दूर पे, जैसे आपको फ्यूल स्टेशन मिल जाते हैं, जिस तरीके से आपको पेट्रोल स्टेशन मिल जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अब आपको मिलने वाले हैं ईवी स्टेशन भी। इसकी जो डिटेल है बाकी वो मैं देती रहूँगी आपको धीरे धीरे करके, जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन आएगी। फिलहाल ऑलिफर सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, तो ज़रा वॉल्यूम बढ़ा कर ही गाना इन्जॉय कीजिए। आपकी कशिश के साथ कहते रहे जी बिंदास।
1: Song of the Year.

Vogue. Sunte hai number one radio station. Radio Olive. 106.3 FM. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

ये गाना कितनी सारी लैंग्वेजेस में बनाया, लेकिन मुझे कितना अच्छा लगता है यार ये हर लैंग्वेज में, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये गाना। हाँ जी, आपकी खुद की छोरी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए एक अमेजिंग वाली चीज लेकर। हाँ जी, बिंदास मॉर्निंग शो तो मैं आपके लिए लाई ही हूँ 106.3 रेडियो अलेबल, लेकिन आपके लिए आपका वीकेंड सॉर्ट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया वाली न्यूज मैं लेकर आई हूँ। सो जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप मिस कर रहे होंगे ना यार अपने घर पे फेस्टिव सीजन को, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार अभी हम जो है अपने घर पे होते तो अभी एथनिक वेयर में बहुत सारा फन फॉलिक मस्ती मजा कर रहे होते एंड म्यूजिकल नाइट्स जो है वो इन्जॉय कर रहे होते। तो देखो यार, अब दोहा में भी आपको जो है वही ग्लो ग्लैम अप और ग्रूव जो है वो मिलने वाला है। सो अल्टीमेट फेस्टिव फ्यूजन म्यूजिकल नाइट जो है वो होने वाली है ए हालो धूम, जहाँ पर जो है आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड अल्टीमेट म्यूजिक के लिए जो है बॉलीवुड की सेंसेशनल स्टार इशिता विश्वकर्मा जो है वहाँ पर लाइव आपके लिए परफॉर्म करने वाली है, और बहुत सारे मतलब देसी बीट्स के साथ चटपटे स्ट्रीट फूड का भी इंतजाम हमने आपके लिए किया हुआ है। सो दिस इज रेडियो ऑलिव एंड ए टू जी इवेंट्स ट्रेडिंग एंड केटरिंग प्रेजेंट्स ए हालो धूम, जहाँ पर जो है इस फ्राइडे यानी 9 अक्टूबर को रिजेंसी हॉल में आपको बहुत सारा फन जो है वो हम करने का मौका देने वाले हैं। आप जो है टिकट्स बुक कर सकते हैं स्नोनू सिटी पर जो है जाकर, या फिर 3328 3393 पर जाकर। बाकी अगर आपको फ्री में कपल टिकट्स जो है वो जीतनी है, सो उसका मौका भी मैं आपको देने वाली हूँ थोड़ी सी देर में। एक सवाल आपके लिए लेकर आने वाली हूँ मैं बॉलीवुड से जुड़ा हुआ, जिसका आंसर देकर जो है आप इस ए हालो धूम में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको जो है मैं कपल टिकट जो है वो दे दूंगी। फिलहाल प्यार वाला गाना जो है वो इन्जॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर एंड 3311063 ये अपने व्हाट्सएप पे जो है नंबर ओपन करके रखिए। मैं जल्दी से सवाल पूछूंगी एंड आपको जल्दी से जल्दी जवाब देना होगा, एंड फिर आपको जो है हमारे लकी विनर्स को मौका मिलेगा कपल टिकट जीतने का इस इवेंट में जाने के लिए। सो फिलहाल अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर जास्मिन सैंडल्स की आवाज में ट्रैक एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
0: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: एकदम ही शादी वाला माहौल बना दिया। मैं तो सिर्फ फेस्टिविटीज की बात कर रही थी यार, अभी तक तो मैं शादी तक पहुंची भी नहीं थी।
1: ये छोरी
0: हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी कशिश जो है वो आ गई है यहाँ पर बिंदास मॉर्निंग लेकर, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग्स को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हमारे एक इवेंट के बारे में, जहाँ पर हम फेस्टिविटीज जो है उसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। अनलिमिटेड म्यूजिक होने वाला है, चटपटी स्नैक्स होने वाले हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा फन फॉलिक मस्ती और मज़ा होने वाला है। एंड बॉलीवुड की एक बहुत ही अमेजिंग सिंगर जो है इशिता विश्वकर्मा, वो भी लाइव जो है वो ज्वाइन करने वाली है। सो यार देखो, बहुत ही फन इवेंट होने वाला है, सब डांस कर पाएंगे, फन कर पाएंगे, एंड आप इसकी टिकट जो है वो स्नूरू से जाकर ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं। लेकिन आपके पास मौका है इस इवेंट के कपल टिकट्स जीतने का। सो उसके लिए देखो बस आपको क्या करना है, आपको मुझे जो है आंसर देना है मेरे एक बहुत ही आसान से सवाल का। और सवाल बस ये है कि आपने वो गाना सुना होगा शाहरुख खान का।

0: उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए। सो ये जो काइट वाला एक फेस्टिव मोड का जो सॉन्ग है ये कौन सी मूवी का है, बस आपको ये बताना है मुझे 3311063 पर कि ये जो उड़ी उड़ी जाए फेस्टिव वाला गाना है, शाहरुख खान की मूवी का गाना है, ये कौन सी मूवी का है। 3311063 जो है ये हमारा नंबर है। ए हालो धूम हमारे इवेंट का नाम है जो आपके लिए रेडियो ऑलिव एंड ए टू जी इवेंट्स लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको कपल इवेंट टिकट जो है वो जीतने का मौका मिलने वाला है। सो जल्दी से 3311063 पर मुझे मैसेज कर दो आंसर कि उड़ी उड़ी जाए ये जो है ये कौन सी मूवी का गाना है। फिलहाल आपके लिए जबरदस्त हिट गाना जो है आ रहा है, सो वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी. कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में. फास्ट, इजी और रिलायबल. विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप
1: नाउ. बेहतरीन आर्किटेक्चर की कोई बात करे और वो कतर का जिक्र ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता. आइए आज चलते हैं कतर के आर्किटेक्चरल सैर पर.
2: नेशनल म्यूजियम, ये यूनिक स्ट्रक्चर कोई स्पेसशिप नहीं बल्कि नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर है. इसको आर्किटेक्ट जीन नोवेल ने डेजर्ट रोज से इंस्पायर होकर बनाया है. ये इंटरलॉकिंग डिस्क्स कतर के पास्ट और फ्यूचर को जोड़ती हैं इन अ वे दैट्स कम्प्लीटली फ्यूचरिस्टिक एंड ब्रेथटेकिंग.
1: वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर देखो कतर का आर्किटेक्चर रेडियो ऑलिव की नजर से.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लाइबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड.

हां जी, अमेजिंग वाली गाने के बाद मैं आ चुकी हूँ आपके लिए 106.3 रेडियो ऑलिव पर बिंदास मॉर्निंग लेकर। हाँ जी, आपकी कुल सी छोरी कशिश जो है आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी है। एंड थोड़ी देर पहले आपसे मैंने पूछा था एक सवाल, आपको मैं देने वाली थी हमारे अमेजिंग वाले ए हालो धूम इवेंट के टिकट, जहाँ पर आप बहुत सारा फन फॉलिक मस्ती मजा जो है वो कर सकते हो। एंड एक कपल टिकट के लिए जो है मैंने पूछा था सवाल कि उड़ी उड़ी जाए जो एक फेस्टिव वाला गाना है जिसमें शाहरुख खान है, वो कौन सी मूवी का गाना है। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे सही आंसर दिया। आसिफ जी ने कहा है रईस मूवी का ये ट्रैक है। एंड मिस्टर जेस जी ने जो है वो कहा है ये मूवी जो है उसका नाम रईस है। एंड उसके बाद हमजा जी ने जो है कहा है इस मूवी का नाम रईस है। एंड बहुत सारे और लोगों का भी मेरे पास मैसेज आया है, एंड थैंक यू सो मच इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस देने के लिए। लेकिन हमारे विनर्स का नाम जो है वो कुछ दिनों बाद हम डिस्क्लोज करने वाले हैं, सो कीप मैसेजिंग, हो सकता है कि आप हमारे लकी विनर बन जाएं। सो लकी विनर्स के पास जो है वो पहुंच जाएगा मैसेज। फिलहाल आप अमेजिंग वाले गाने जो है वो इंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ। मैं हूँ आपकी कशिश। एंड आप ये मत सोचिए, डिसअपॉइंटेड मत होइए कि यार अभी नहीं जीते तो हम जीत ही नहीं पाएंगे। आपको हम बार बार मौके देते रहेंगे। आज इवनिंग शो में सिमरन के साथ भी आपके पास मौका है अमेजिंग वाले वाउचर्स जो है वो जीतने का, टिकट्स जीतने का। सो जल्दी से वॉल्यूम बढ़ाकर जो है ये गाना एंजॉय कीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड रहिए 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
0: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: दीपिका
1: पादुकोण
0: रेडियो ऑलिव 106.3
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

एंट्री लिए राम रतराव ने इस गाने में। बस मुझे भी वैसे ही करना था, बट मेरे लंबे बाल नहीं थे यार उतने कभी। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश, आप मेरे साथ बिंदास मॉर्निंग जो है वो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है, क्योंकि कल इसी वक्त पे यानी सुबह 6 से 10 मैं आपकी मॉर्निंग्स को, बेसिक्स मॉर्निंग को जो है बनाऊंगी और ज्यादा बिंदास। तो देखिए वॉल्यूम बढ़ाकर आपको बस स्टे ट्यून रहना है 106.3 रेडियो एलएफ पर। फिलहाल जाते जाते एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए और सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। और अगर मेरी याद सताए तो रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर आकर मुझे ढूंढ लेना, वहां पर तो मैं रहूंगी। बाकी 3311063 इज आर नंबर, वहां पर भी आकर आप हमसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास। सारा बाय बाय, टेक केयर।

0: मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस लाइफ मस्त है. भाई मंडे आ चुका है, लेकिन एक बात बताइए, क्या मंडे को हर बार एक नया वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनना जरूरी है? न्यू वीक कल स्टार्ट हो गया, नए गोल्स आपको पता चल गए, नई हैबिट्स, नई डाइट, नया वर्कआउट. मंडे को ना हम अपनी लाइफ की एक प्लानिंग कर लेते हैं कि यार बस कल से सब कुछ करूंगी. संडे जब हम ऑफिस आते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार आज वीकेंड के बाद इतना डिफिकल्ट होगा. सो टुडे लेट्स ट्राई समथिंग मच सिंपलर, द 1% आइडिया. सो आपको आज अपनी लाइफ कंप्लीटली नहीं चेंज करनी है, बस कल से थोड़ा सा बेटर करना है. कल 10 पेजेस अगर पढ़े थे तो आज 2 पेजेस ज्यादा पढ़ने हैं. एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की थी तो 10 मिनट वॉक करनी है. कल किसी इंपॉर्टेंट काम को पोस्टपोन कर रहे हो तो आज उसका सिर्फ फर्स्ट स्टेप कर लीजिए, क्योंकि प्रोग्रेस का मतलब ना हमेशा बहुत बड़ा लीप या स्टेप नहीं होता, वन स्मॉल थिंग डन कंसिस्टेंटली बस. और मुझे लगता है कि मंडे के लिए मोटिवेशन काफी है. सो आपको पूरी लाइफ की यू नो ज्ञान नहीं दूंगी मैं. आई विल से कि बस आज का दिन थोड़ा सा बेटर बनाना है. और सुन रहे हैं आप लाइफ मस्त है, और मेरा सवाल भी आपसे यही है कि आज आप अपने कल वाले वर्जन से 1% बेटर क्या कर सकते हो? बस एक चीज, बिग रिजोल्यूशन नहीं चाहिए, वन स्मॉल विन. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, दिस इज मी मुस्कान विद यू. स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है. सुनो
2: money follows man.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Time check. Brought to you by Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Hi Radio Olive.
3: Radio Olive.
2: 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
3: Shahrukh Khan.
4: I'm in number one. Radio Olive.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
1: बेहतरीन आर्किटेक्चर की कोई बात करे और वो कतर का जिक्र ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए आज चलते हैं कतर के आर्किटेक्चरल सैर पर। कतारा विलेज कल्चर और आर्किटेक्चर का परफेक्ट ब्लेंड देखना है तो कतार आइए। यहाँ का ग्रीक स्टाइल एम्पीथिएटर और कतारा मॉस्क की ब्लू गोल्ड टाइल्स आपका दिल ही जीत लेंगी। इस जगह के हर कॉर्नर में इतना डिटेल्ड काम है कि आपका कैमरा रोल पूरा फुल हो जाएगा। वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर देखो कतर का आर्किटेक्चर रेडियो ऑलिव की नजर से।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: आज वर्ल्ड टीचर्स डे है और इंटरेस्टिंगली 2026 का थीम है कि स्टैंडिंग विद टीचर्स 60 इयर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रोफेशन एडवांसिंग इट्स स्टेटस एंड शेपिंग आवर फ्यूचर. सो अक्टूबर 5 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1966 में इस डेट को यूनेस्को ने टीचर्स के स्टेटस से रिलेटेड इंटरनेशनल रिकमेंडेशन अडॉप्ट की थी. वर्ल्ड टीचर्स डे ऑफिशियली 1994 से ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइफ मस्त है पर मैं पूरी टेक्स्ट बुक वाली बात नहीं कर रही हूँ. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको अपने स्कूल के कितने चैप्टर्स याद हैं, फ्रैक्शन, केमिकल इक्वेशंस या फिर हिस्ट्री की कोई डेट्स? प्रोबेबली बहुत कम या फिर कुछ भी याद नहीं होगा. लेकिन एक टीचर की कही हुई लाइन, मे बी वन थिंग जो आपको याद होगी कि उन्होंने कभी कहा होगा कि यार यू कैन डू इट, थोड़ा और मेहनत करो या डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. ऐसे ना बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं. समटाइम्स टीचर्स सब्जेक्ट नहीं सिखाते, टीचर्स हमें खुद के बारे में कुछ सिखा कर जाते हैं. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM एंड टेल मी कि आपकी लाइफ की वो कौन सी टीचर हैं जिन्होंने एक सेंटेंस आज भी आपको सिखाया है और आपको याद है. 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है. कूल सॉन्ग.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल

सो टुडे इज वर्ल्ड हैबिटेट डे. सो टीचर्स डे की बात हो रही थी और मेरे पास मैसेज आया कि आज वर्ल्ड हैबिटेट डे भी है और इसको सुनते ही हम थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं. हाउसिंग, सिटीज, अर्बन डेवलपमेंट, बट लेट्स मेक इट पर्सनल यार, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाउस और होम में डिफरेंस क्या है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस लाइफ मस्ट है. हाउस हो सकता है बहुत सुंदर हो, एक बड़ा सा किचन हो, बहुत अच्छा फर्नीचर हो, परफेक्ट इंटीरियर्स हो, पर होम में भी वो छोटा सा रूम जहाँ पर मम्मी की आवाज़ आती है, वो किचन जहाँ पर चाय की स्मेल आती है, वो सोफा जहाँ पर फैमिली बैठती है, या एक ऐसा घर जहाँ आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, यू जस्ट बिलोंग्ड. ठीक है, और कभी कभी घर की सबसे एक्सपेंसिव चीज़ फर्नीचर नहीं होता, कोई याद, कोई सवाल होता है. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपके लिए घर को घर बनाने वाली एक चीज़ क्या है. फॉर मी इट्स फैमिली. मुझे लगता है कि जहाँ पर भी आपके मम्मी पापा हैं, आपकी फैमिली है, वही आपके लिए घर बन जाता है. सो यू टेल मी कि आपके लिए वो कौन सी चीज़ है या कौन से इंसान है जो आपके घर को घर बनाते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल, मैं हूँ मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है. जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास.

भाई दृश्यम 3 जो है वो वीकेंड पर आ गई थी और सबने ऑलमोस्ट देख भी लिया, लेकिन फिल्म की स्टोरी के पीछे एक स्टोरी और है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM है, हुमस्कार और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो द कंक्लूजन जो मूवी आई है दृश्यम 3, उसके राइटर हैं आमिल, ठीक है। उन्होंने बताया कि फाइनल स्क्रीन प्ले तक पहुंचने के प्रोसेस में 100 से ज्यादा ड्राफ्ट लिखे गए। मतलब हमें लगता है कि यार एक बार में मूवी बन गई, 11 साल से चलती आ रही है, सब कुछ पहले से इमेजिन होगा, लेकिन नहीं, इतनी मेहनत की है। इमेजिन कीजिए, हम थिएटर में बैठे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, लाइट्स ऑफ हैं, फिल्म स्टार्ट हुई और हमें लगता है कि वाह क्या ब्रिलियंट आइडिया है, बट बिहाइंड दैट ब्रिलियंट आइडिया 100 वर्जन्स, मे बी एक सीन लिखा डिलीट, फिर लिखा फिर डिलीट, फिर सोचिए नहीं यार ये इससे बेटर हो सकता है। और दैट्स एक्चुअली ट्रू अबाउट क्रिएटिविटी। हम फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, स्ट्रगल बिल्कुल नहीं देखते। एक ग्रेट सॉन्ग के पीछे 20 रिजेक्टेड ट्यून्स हो सकती हैं, एक किताब के पीछे हंड्रेड्स ऑफ एडिट्स हो सकते हैं, एक ग्रेट फिल्म के पीछे दर्जनों रीराइट्स हो सकते हैं। और आपके हिसाब से ग्रेट क्रिएटिविटी टैलेंट से ज़्यादा आती है या बार बार ट्राई करने से? आई फील जब आप बार बार ट्राई करते हो तो आपको समझ में आता है इससे बेटर हो सकता है, उससे बेटर हो सकता है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो एक बार में क्लिक कर जाती हैं। सो यू टेल मी कि दृश्यम 3 आपको कैसी लगी? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है।

भाई इंडिया ने एशियन गेम्स में क्रिकेट गोल्ड रिटेन कर लिया और वो भी पाकिस्तान को फाइनल में हरा कर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। इंडिया वॉन द मेन्स टी20 फाइनल एंड रिटेन्ड इट्स एशियन गेम्स क्रिकेट टाइटल। भाई यहाँ पर बात ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, मतलब मैच देखना बहुत इंटरेस्टिंग था। अब ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान फाइनल का एक्साइटमेंट अपनी जगह है, लेकिन मुझे आज स्कोर बोर्ड से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है टीम वर्क। टीम में एक स्टार प्लेयर होता है, एक मैच विनर होता है, एक लीडर होता है, एक पर्सन जो प्रेशर में काम रहता है, और एक ऐसा प्लेयर भी होता है जिसका नाम शायद हेडलाइंस में कम आता है बट टीम उसके बिना इनकम्प्लीट होती है। एग्जैक्टली सेम थिंग लाइफ में भी होती है। ऑफिस हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स का ग्रुप हो, हर टीम में हर इंसान का रोल अलग होता है। सो अगर आपको एक टीम में चूज करना हो, लीडर, प्रॉब्लम सॉल्वर, मोटिवेटर या फिर क्रिएटिव ब्रेन या फिर साइलेंट परफॉर्मर, सो आप क्या हैं अपनी टीम के? यू आर लिसनिंग रेडियो 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है एंड नंबर इज सेम 3311063। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Time check. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alcohol.
0: Say a halo dhu with Radio Olive and A to Z event and trading catering.
2: Doha Walo, get ready to glow, glam up and groove. We are bringing you the ultimate fashion fusion musical night. Throw on your brightest, most colorful festive ethnic wear, grab your favorite accessories and let's light up the dance floor.
0: Aur ultimate music ke liye saath hogi Bollywood ki sensational star Ishita Vishwakarma live.
2: Get ready for Desi Beats, Chatpate Street food and full on vibes this Friday, 9th October at Regency Hall,
0: 6 pm onwards.
2: Book your ticket on Snoonu City or for more info call 3328-3393.
3: बेहतरीन आर्किटेक्चर की कोई बात करे और वो कतर का जिक्र ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता. आइए आज चलते हैं कतर के आर्किटेक्चरल सैर पर.
4: एजुकेशन सिटी मॉस्क. दोस्तों ये कोई ऑर्डिनरी मॉस्क नहीं बल्कि एजुकेशन सिटी मॉस्क है जिसे मंजेरा इवार्स ने डिजाइन किया है. इसका फ्यूचरिस्टिक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर इस्लाम के पांच पिलर्स को रिप्रेजेंट करने वाले पांच बड़े कॉलम्स पर टिका है. इसके दो 90 मीटर हाई मीनारें सीधे आसमान की तरफ पॉइंट करते हैं. ट्रूली अ मास्टरपीस ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी.
3: वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर देखो कतर का आर्किटेक्चर रेडियो ओलिव की नजर से.
5: Sarika.
6: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
7: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

0: Okay, this is for Marvel fans. You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम Yes, of course, Life Must है. So, Avengers Endgame ने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री में ना कम बैक कर दिया था. पिछले कुछ दिन पहले ये मूवी रिलीज हुई थी और आई वॉज थिंकिंग कि भाई मतलब इसमें क्या चेंजेस हैं आफ्टर द न्यू एंड गेम. उसमें री रिलीज हुआ और फिल्म हैज़ क्रॉस अप्रॉक्सीमेटली $2.925 billion वर्ल्ड वाइड. एंड उसके बाद आपको पता है कि हाइएस्ट ग्रॉसिंग मूवी एवर अगर कोई है तो यही है. सो आई वॉज थिंकिंग यहाँ पे मुझे क्या फैसिनेटिंग लगता है. मूवी रिलीज हुई थी 2019 में. 7 years लेटर पीपल आर स्टिल बाइंग टिकट्स टू वॉच अ मूवी दे हैव ऑलरेडी सीन. क्यों? क्योंकि समटाइम्स वी आर नॉट पेइंग फॉर द मूवी एक्चुअली वी आर पेइंग फॉर द फीलिंग द थिएटर क्राउड म्यूजिक फाइनल बैटल और इमोशनल मोमेंट मे बी इवन द पर्सन यू वॉच्ड इट विद. सो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मूवी का ना अपना एक अलग क्रेज है. 2019 में हो सकता है आपने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ देखी और यहाँ पर कतर में आपके अब नए दोस्त बन गए हो. सो ऐसी कौन सी मूवी है जो आपने ऑलरेडी देखी है बट अगर वो थिएटर में स्पेशल री रिलीज हो तो आप टिकट फिर भी खरीदोगे ही. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव नंबर इज सेम 3311063. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव स्टे ट्यून जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. Bima.
2: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: म्यूजिक में कुछ नेम सिर्फ नेम्स नहीं होते, वो एक साउंड होते हैं, जैसे कि बप्पी लहरी, डिस्को, गोल्ड चेन, सनग्लासेस एंड दैट अनमिस्टेकेबल साउंड. ठीक है, अब उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी म्यूजिक में अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर रही है. बप्पी लहरी के ग्रैंडसन रेगो भी रिसेंटली म्यूजिक वर्क के थ्रू जो है अटेंशन गेन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स कनेक्टेड विद धुरंधर एंड राजा साहब. और यहाँ से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकलता है, लेगेसी ब्लेसिंग्स होती हैं या फिर प्रेशर होता है? भाई मैंने देखा है कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर के बच्चों को इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट के बच्चों को साइंटिस्ट बनना है. क्या ऐसी ही लेगेसी प्रेशर की तरह फील होती है या फिर आपको लगता है कि नो दिस इज ब्लेसिंग क्योंकि बचपन से बच्चों ने वही देखा होता है? सो दुनिया आपको नाम से जज करेगी या सरनेम से? क्योंकि व्हेन योर ग्रैंडफादर इज बप्पी लहरी, नॉर्मल फैमिली इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. बेटा क्या करते हो? म्यूजिक. अच्छा, इसी फील्ड में. एक्चुअली बप्पी लहरी की ग्रैंडसन है तो भाई ये बोलना तो बनता ही है, बस इंट्रोडक्शन खत्म. सो यू टेल मी कि अगर आपको फैमिली प्रोफेशन कंटिन्यू करना पड़े तो आपको प्राइड फील होगा या प्रेशर फील होगा? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू. शो का नाम है लाइफ मस्त है.
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour. Yeah.

listening to Radio Olive 106.3 FM. अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान, अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में, कतर में पहली बार।

0: Olive, 106.3 FM, Gio Bendaz.
1: The ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khul.
2: Say Hey Halo Dho with Radio Olive and A2Z Event and Trading Catering.
3: Doha Walo, get ready to glow, glam up and groove. We are bringing you the ultimate fashion fusion musical night. Throw on your brightest, most colorful festive ethnic wear, grab your favorite accessories and let's light up the dance floor.
2: Aur ultimate music ke liye saath hogi Bollywood ki sensational star Ishita Vishwakarma Lal.
3: Get ready for Desi Beats, Chatpate Street food and full on vibes this Friday, 9th October at Regency Hall,
2: 6 PM onwards.
3: Book your ticket on Snoonu City or for more info, call 3328-3393.
4: बेहतरीन आर्किटेक्चर की कोई बात करे और वो कतर का जिक्र ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता. आइए आज चलते हैं कतर के आर्किटेक्चरल सैर पर.
5: दोस्तों ये है म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट जिसे फेमस आर्किटेक्ट आई एम पेई ने डिजाइन किया है. बाहर से देखने में ये किसी ज्योमेट्रिक फोर्ट्रेस की तरह लगता है लेकिन ध्यान से तो देखो ऐसा लगता है जैसे बुर्का पहने कोई लेडी खड़ी हो. इसके अंदर जो दोहा स्काईलाइन का व्यू है वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल है.
4: वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर देखो कतर का आर्किटेक्चर रेडियो ऑलिव की नज़र से.
0: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: पर्सनल स्टाइल्स आपको बताता है कि व्हाट्स यू एक्चुअली. मे बी योर सिग्नेचर इज ऑलवेज व्हाइट शर्ट, मे बी साड़ी, मे बी स्नीकर्स, मे बी गोल्ड ज्वेलरी, मे बी ब्लैक कलर, मे बी लिटरली कंफर्टेबल क्लोथ्स ओनली. सो आप मुझे बताइए कि आपके सिग्नेचर स्टाइल क्या है, वो चीज़ जो ट्रेंड में हो या नहीं हो फिर भी आपको पसंद है. बाय द वे फॉर मी इट्स यू नो ओवर साइज टी शर्ट्स एंड शर्ट्स, जो मुझे लगता है किसी भी डेनिम के साथ पहन लो और हो गया काम. यू नो यू कैन गो एनी वेयर, बट समटाइम्स इट्स फील कि यार ये उतना अप टू डेटेड नहीं है. सो यू टेल मी कि आपको क्या लगता है, प्रेशर फील होता है फैशन का? 3311106 माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल

एक जो चीज है मुझे इंस्टाग्राम और म्यूजिक के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, आज के 30 साल पुराने गाने सडनली रील्स पर आ जाते हैं और एक पूरी नई जनरेशन उसे डिस्कवर कर लेती है और हम सबको वो पुरानी यादें जो है, मतलब हमारे मम्मी पापा के टाइम की, आपने कभी उनकी शादी की सीडी देखी होगी, कभी वो मोटे मोटे कैसेट्स देखे होंगे और उनमें वो गाना सुना होगा, अरे ये तो हमारे टाइम का गाना है, वो हमेशा यही कहते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। और बच्चे बोलते हैं यार सच अ यू नो वाइब। सो बेसिकली म्यूजिक एल्गोरिदम कभी कभी आपको नए गाने जो है वो सजेस्ट नहीं करता, पुरानी पुरानी बिल्कुल जो यादें हैं वो रिकमेंड करता है। और ओल्ड सॉन्ग का मैजिक भी यही है, लिरिक्स पुराने हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग पुरानी हो सकती है, बट इमोशन स्टिल फ्रेश। सो आज का म्यूजिकल क्वेश्चन आपसे है कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक गाना चूज कीजिए जो आज भी आपको बिल्कुल ऐसे गूज बम्स देता है, तो कौन सा गाना होगा? और प्लीज सिर्फ नाम नहीं, ये भी बताइएगा कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि समटाइम्स द स्टोरी बिहाइंड द सॉन्ग इज मोर ब्यूटिफुल देन द सॉन्ग इटसेल्फ। सो यू टेल मी, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, नंबर सेम है 3311063, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है लाइफ मस्त है जियो।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: और लाइफ मस्त है के एंड में एक छोटा सा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगी आपसे. हम सब ना कुछ जल्दी चाहते हैं, फास्ट करियर, फास्ट सक्सेस, फास्ट मनी, बहुत जल्दी से एक फास्ट सा आंसर, और रिलेशनशिप्स भी, इवन फूड भी. 30 मिनट्स डिलीवरी, नो, 15 मिनट में चाहिए सब कुछ. बट एज वी ग्रो अप मे बी वी रियलाइज कि हर चीज़ को जल्दी करना जरूरी तो नहीं होता यार. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. सम फ्रेंडशिप नीड्स टाइम, ठीक है, करियर को टाइम चाहिए, सपनों को टाइम चाहिए, कुछ आंसर्स भी टाइम के साथ ही मिलते हैं, और शायद मैच्योरिटी का एक पार्ट ये भी है कि बीइंग कंफर्टेबल विद नॉट हैविंग एवरीथिंग फिगर्ड आउट इमीडिएटली. सो आज लाइफ मस्त है का क्वेश्चन भी थोड़ा सा यही है कि लाइफ में ऐसी एक चीज क्या है जिसके लिए आपने अब डिसाइड कर लिया है कि आई डोंट नीड टू रश दिस, ठीक है, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, कोई सपना हो, कोई पर्सनल ग्रोथ हो, व्हाटएवर इट इज, यू नो, मे बी टुडे इज अ गुड डे टू रिमेंबर. स्लो डजंट ऑलवेज मीन स्टक, यू नो, समटाइम्स स्लो मीन्स यू आर बिल्डिंग समथिंग प्रॉपरली, ठीक है. सो अभी अगर कुछ ऐसा लग रहा है ना लाइफ में कि यार कैसे होगा, कब होगा, सो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, बहुत जल्दी सारी चीजें हो जाएंगी, ट्रस्ट मी. यू आर लिसनिंग रेडियो 106.3 FM. फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, लेकिन बैक टू बैक अच्छे वाले गाने आप सुन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑलिव पर. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर. Song of the Hour. Yeah.

0: सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर. गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ.
1: फुटवेयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेडीज बैग और हाउस होल्ड आइटम्स सब पर मैसिव सेविंग्स.
0: क्लॉक इज टिकिंग. ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक. डोंट जस्ट शॉप, स्कोर बिग. आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर.
2: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर. ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक.

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ओलिव. जियो बिंदास.
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें। Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha Aage Jo aapke saath Olive Recharge lekar. A very good afternoon, meri jaan. Kya hal chal hai? 5th of October. Monday ka din. Kaisa ja raha hai aapka? Abhi tak ka din kaisa gaya? Agle 3 ghante to dekho ekdam sorted hai mere saath kyunki bahut badhiya gaane lined up hai. Bahut sari baatein lekar aayi hu aapse karne ke liye. Par pehle aapka hal chal janna chahungi. To aajo fatafat se message kar do aur batao kaisa raha ab tak ka din? Kal ka din kaisa tha? Aur सब ठीक तो है ना ऑफिस में? कुछ पंगा तो नहीं हुआ किसी से? और हुआ भी है तो जाने दो, ठीक है? इट इज वर्क प्लेस यार, हो जाता है. उसे दिल पे नहीं लेना होता, उस पे ग्रज होल्ड करके नहीं रखना है. काम की बात है, काम से निपटा दो, खत्म. और सुनते रहो रेडियो ऑल, जियो बिंदास मेरी जान.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान, अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में, कतर में पहली बार। अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतर, 15 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड ट्रस्ट, एक्सपर्ट कोचिंग फॉर नीट, जेईई एंड सीबीएसई, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑप्शंस। आवर 6th ब्रांच इज नाउ ओपन एट अलवाक्रा। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 5005613।
1: बेहतरीन आर्किटेक्चर की कोई बात करे और वो कतर का जिक्र ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए आज चलते हैं कतर के आर्किटेक्चरल सैर पर। कतारा विलेज, कल्चर और आर्किटेक्चर का परफेक्ट ब्लेंड देखना है तो कतारा आइए। यहाँ का ग्रीक स्टाइल एम्पीथिएटर और कतारा मॉस्क की ब्लू गोल्ड टाइल्स आपका दिल ही जीत लेंगी। इस जगह के हर कॉर्नर में इतना डिटेल्ड काम है कि आपका कैमरा रोल पूरा फुल हो जाएगा। वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर देखो कतर का आर्किटेक्चर रेडियो ऑलिव की नज़र से।
2: लिसनर, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: रेडियो ऑलिव नंबर वन।
4: This hour is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम।

0: Shock.
1: तनीषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 FM पर. ऑल एवरी चार्ट चल रहा है यहाँ पर. और यार कभी कभी ऐसा होता है देर आर फ्यू पीपल इन आर लाइव्स की जिनकी प्रेजेंस हमें पता है बाय डिफॉल्ट रहेगी और इंटेंशनली नहीं नोइंगली नहीं बट अनइंटेंशनली अनलोइंगली हम ना उन्हें ऐसे फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं और वो इंसान को महसूस हो रहा होता है बट दे वोंट से टू यू एंड यू डू नॉट इवन रियलाइज क्योंकि आप तो जान के कर ही नहीं रहे हो ना. आप इस रेखे में हो कि भाई वो इंसान तो हमेशा मेरे साथ रहने वाला है और वो इंसान फील कर रहा है कि यार ये तो मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ये तो मेरी वैल्यू ही नहीं कर रहा है. सो कभी कभी ना कह के इंसान को महसूस करवाना भी ज़रूरी होता है कि वो आपके लिए कितने मायने रखते हैं. तो दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू. ऐसा जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिनकी प्रेजेंस के बिना लाइफ ऐसे बिना नमक के खाने वाली टाइप्स लगती है, उन्हें एक बार ज़रूर बताइएगा कि यार सुन तू बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी. और इसी बात पे सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना, स्टे ट्यून एंड रेडियो बिंदास. कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: Nisha.
1: ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ऑल 106.3 एफएम दनीशा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. और देखो वेदर ट्रांजिशन वाले मूड में है, कभी ऊपर कभी नीचे हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी ऐसे हल्का ठंडा लगने लगता है. तो अभी जो है कोल्ड कैच करने का सबसे ज्यादा चांस है. सो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि आप किसी भी तरह का फ्लू ना कैच करें. आई मीन जस्ट टेक ऑल द प्रिकॉशंस विच आर रिक्वायर्ड. ठीक है, ऐसे बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है, एसी के नीचे जाके एकदम से खड़े नहीं हो जाना है, धूप में अगर बहुत है स्टे हाइड्रेटेड. अगर आपको निकलना ही पड़ रहा है बहुत ज़रूरी काम से, स्टे हाइड्रेटेड, पानी अपने साथ रखिए, बहुत सारा फ्लूड लेते रहिए, सो यू नो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सही रहे और आपको कोई भी वायरल या फ्लू नहीं हो. एंड ज़रा सा भी अगर लग रहा है तो प्लीज़ गो एंड विजिट अ डॉक्टर, बिकॉज अगर ये बढ़ता है ना तो ये जाता नहीं है. आप मेरी आवाज़ सुन ही रहे हैं, चिपक गया है भाई, नहीं जा रहा है. सो प्लीज़ ख्याल रखें अपना और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव थ्री बिंदास.
0: रेडियो ऑलिव पर
2: फ्रेश
0: सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: बेहतरीन आर्किटेक्चर की कोई बात करे और वो कतर का जिक्र ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए आज चलते हैं कतर के आर्किटेक्चरल सैर पर।
2: एजुकेशन सिटी मॉस्क। दोस्तों, ये कोई ऑर्डिनरी मॉस्क नहीं बल्कि एजुकेशन सिटी मॉस्क है, जिसे मंजेरा इवार्स ने डिजाइन किया है। इसका फ्यूचरिस्टिक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर इस्लाम के पांच पिलर्स को रिप्रेजेंट करने वाले पांच बड़े कॉलम्स पर टिका है। इसके दो 90 मीटर हाई मीनारे सीधे आसमान की तरफ पॉइंट करते हैं। ट्रूली अ मास्टरपीस ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी।
1: वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर देखो कतर का आर्किटेक्चर रेडियो ऑलिव की नजर से।
3: सलाम प्रणाम नमस्कार वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
4: रेडियो
0: 106.3 जियो बिंदास। ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: रेडियो ओलिव नंबर वन।
5: ओलिव लगा और हो जा रिचार्ज।
4: ओलिव रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज। रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
6: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

0: सुन के करो ना तो इतना बोरिंग नहीं लगता और बहुत जल्दी हो जाता है. दैट इज़ व्हाई आई लव म्यूज़िक. और मुझे लगता है हमारी लाइफ की हर सिचुएशन के बैकग्राउंड में म्यूज़िक होना ही चाहिए. बट क्योंकि वो नहीं है तो मैं अपने दिमाग में लगा देती हूँ. लाइक राइट नाउ इफ़ आई एम सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू तो मुझे ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई हैव द म्यूज़िक हियर विद मी. इफ़ आई एम गोइंग समवेयर और मैं गाने नहीं सुन रही हूँ उस वक्त तो मैं अपने यू नो दिमाग में से पिक्चराइज करूँगी कि यार अभी मैं यहाँ जा रही हूँ यहाँ पर कौन सा गाना फिट बैठेगा. एंड वी ऑल डू दैट राइट. ऐसे कार में बैठ के हीरो या हीरोइन समझ के खुद को एंड देन इमेजिनिंग लुकिंग आउट ऑफ द विंडो और गाना चल रहा है मूवीज में जो देखा है हमने वी थिंक अबाउट देम राइट. और इज इट जस्ट मी? प्लीज़ बताओ मुझे कि आप भी करते हो वरना मैं बहुत सिली फील करूँगी. हाँ सो बात ये थी कि किसी ने एक वेबसाइट बनाई है जहाँ पे आपके एवरीडे जो चोर्स हैं लाइक यू नो कपड़े धोना झाड़ू लगाना बर्तन साफ करना हम सबको करने होते हैं ये काम खाना बनाना इन सब के लिए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है. सो वेन एवर यू आर डूइंग वट एवर वर्क उसके लिए एक सॉर्टेड प्लेलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग गाने हैं एंड दैट मेक्स थिंग्स मोर फन एंड मोर ईजी फॉर यू. आई थिंक म्यूजिक एड्स दैट स्पार्क टू लाइफ. सो दिस इज सच एन अमेजिंग थिंग. डू गो एंड चेक आउट दैट वेबसाइट और उसका इस्तेमाल कीजिए भरपूर. और फिलहाल सुनते रहिए रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Danisha hai aapke saath. Olive Richard chal raha hai yahan par.
1: Wacky Wisdom.
0: Wacky Wisdom mein baat karte hain Pune ke cafe ki. So, कुछ वक्त पहले मैंने इंदौर के कैफे की बात करी थी जहां पर उन्होंने ये आइडिया लगाया था कि इट इज़ काइंड ऑफ अ डोनेशन वाला स्पेस. यू ऑर्डर वट एवर यू वांट एंड देन यू डोनेट वट एवर मनी यू वांट टू डोनेट. इनिशियली तो लोगों ने यू नो बहुत जेनरसली पे किया एंड देन इवेंचुअली दे स्टार्टेड ऑर्डरिंग फूड फॉर लाइक 500 और 1000 एंड देन दे वुड पे और डोनेट ओनली 10 rupees 50 rupees. तो ऐसे तो लॉस में जा रहा था. सो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि हम बाहर स्क्रीन लगा देते हैं, इंसान का ऑर्डर और उनका डोनेशन दोनों सबको नजर आएगा. वैसे ही शोशे के चक्कर में लोगों ने ऐसे अच्छे से डोनेट करना शुरू कर दिया. सो द कैफे बिकेम अ सक्सेस. नाउ देयर इज दिस लेडी इन पुणे, उन्होंने एक कैफे खोला है. द कैफेज नेम इज मौजी द टाइम कैफे. ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट उस कैफे का ये है कि आपने वहाँ अपने सिर्फ टाइम के लिए पैसे देने हैं. आप कितना वक्त वहाँ बिता रहे हैं उसके लिए आपने पे करना है. कोई ड्रिंक्स आपको ऑर्डर करनी है, फूड ऑर्डर करना है, इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल. दैट इज एब्सोल्युटली योर कॉल. आप बस वहां जाके बैठना चाहते हैं, आप बैठ सकते हैं. यू जस्ट पे फॉर द टाइम यू आर सिटिंग देयर एंड इट हैज टर्न्ड इनटू अ 2 crore बिजनेस. यस, पीपल आर लविंग दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज यूजुअली कैफेज में जाएं तो वो आपकी शक्ल ही देखते रहते हैं कि यार ये तो बैठे हुए हैं, ये ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे हैं. और आप भी कॉन्शियस हो जाते हैं और उस चक्कर में आपको ऑर्डर करना पड़ता है. कई बार ऐसा होता है कि वी जस्ट वॉन्ट टू सिट इन अ पब्लिक सेटिंग या फिर यू नो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो थोड़ी देर के लिए जाकर वहां बैठ गए हैं एंड यू आर जस्ट फिनिशिंग ऑफ योर वर्क और यू जस्ट वांट टू टॉक टू समबडी. आप आपके दोस्त के साथ है पर जरूरी नहीं है ना हर बार कुछ खाने का मन करे. से आपने कॉफी भी ऑर्डर करी, कॉफी जितनी देर में पी ली खत्म हो गई, अब दे वुड स्टिल एक्सपेक्ट कि और ऑर्डर करो अगर आप और बैठ रहे हो तो. अदरवाइज उन्हें लगता है कि जितनी कॉफी का वर्थ है उतना तो ये बैठ ही लिए हैं. सो वो वाला जो कॉन्शियसनेस वाला थिंग है वो हट जाता है एंड पीपल आर जस्ट पेइंग फॉर द टाइम दे आर स्पेंडिंग देयर इन द कैफे. वेदर दे वांट टू सिट फॉर 15 मिनट्स, दे वांट टू सिट फॉर 2 hours, दैट इज एब्सोल्युटली देयर कॉल एंड आई रियली लाइक दिस आइडिया. दिस इज रियली कूल. ऑन दैट नोट सेंडिंग ब्यूटिफुल ट्रैक्स. स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास.

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

तनीषा के साथ आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. एंड इम्तियाज अली की मूवीज हम सबने देखी है राइट, और उनकी मूवीज कितनी प्रोफाउंड और डीप होती है वो हमें यूजुअली एक वक्त के बाद पता चलता है मूवी रिलीज होने के, मतलब सालों बाद. एक्चुअली काफी सारे एग्जाम्पल्स ऐसे, तमाशा इज देयर, रॉक स्टार इज देयर, कुछ लोगों को मैं वापस आऊंगा भी नहीं समझी, पसंद नहीं आई, एंड इवेंचुअली यू विल सी आफ्टर फ्यू ईयर्स दे विल गो क्रेजी अबाउट इट. बट देर आर सो मेनी थियोरीज ही यू नो चुपचाप से अपनी मूवी के थ्रू दिखा देते हैं, उनके बारे में बात करेंगे कुछ ही देर में. लौट कर आती हूँ और बताती हूँ कौन सी थियोरीज हैं वो. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव.

0: से पांच रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Ola 106.3 FM, Tanisha aapke saath. Oliver George chal raha hai yahan par, and we were talking about Imtiaz Ali ki movies mein jo wo chup chap se theories dikha dete hai life ki. Theek hai, so one of them is the red string theory. Iska basic belief ye hai ki ek invisible red string hota hai jo ki do logo ko connect karta hai ek dusre se, and jinke path cross honge कभी ना कभी, नो मैटर वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो जो स्ट्रिंग्स हैं उनके बीच में वो उनको खींच कर एक दूसरे के पास लेकर आएंगी ही. एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इज लव आजकल मूवी, हाउ दीपिका इज लिविंग समवेयर एंड सैफ इज समवेयर, बट दे वर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर, दे वर डेस्टिन्ड टू मीट. सो उनकी जो लाइफ की जर्नी है वो उन्हें एक दूसरे के पास खींच कर ले ही आई. देन देर इज सोलो ईटिंग थियोरी, ये मुझे बड़ा फैसिनेट करता है. सो कभी कभी ऐसा होता है ना, यू सिट अलोन बिकॉज लाइफ इज चेंजिंग अराउंड यू, आपको लग रहा है सब कुछ बदल रहा है एंड यू आर ओनली यू नो कॉन्स्टेंट हियर. And sometimes you simply learn that you don't need someone beside you to keep living. आप अकेले भी हैं तो वो भी enough है. And जो eating alone वाला scene वो picturization करते हैं वो basic यही है दिखाने का कि मेरी company मेरे लिए काफ़ी है, अगर कोई है साथ तो welcome है, नहीं है तो भीड़ कम है जी. And you must have seen that in लव आजकल, जहाँ पे सैफ अली खान अकेले बैठ के सैंडविच खा रहे हैं. Then Rockstar में हमने वो बहुत देखा है. So yeah, and there are a bit more. मैं बात करती हूँ, लौट कर आती हूँ कुछ ही देर में. Stay tuned on Jio Bindaas.

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मे बी अ रिक्वायरमेंट, बट विद बीमा यू गेट सो मच मोर। गेट 24/7 रोड साइड असिस्टेंस विद टोइंग, रिकवरी, टायर चेंज, फ्यूल डिलीवरी, बैटरी बूस्ट एंड लॉकआउट सपोर्ट। स्प्लिट योर पेमेंट इन टू 4 इंस्टॉलमेंट्स एंड स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैश बैक। प्लस गेट अ रिप्लेसमेंट कार फॉर अप टू 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
2: Mom, see what I bought today. I bought a tomato plant, a lemon plant and a mango plant.
1: A mango plant? Isn't that a mango tree? Anyway, why is everything so green? Where did you get all this?
3: Arey, we went shopping at Safari, didn't we? Safari has launched the Go Green, Grow Green promotion. He got really excited when he saw all the plants and arrangements there.
2: Yeah, it's so cool, Mom. There's a lot of flowering plants too. I picked out the best ones.
3: He selected each one himself. There are plenty more. We can go together sometime.
4: A wide variety of vegetable and fruit saplings, medicinal and ornamental plants, indoor plants, various seeds, plus garden tools, fertilizers, and everything else needed for gardening. All arranged at Safari starting October 5th as part of the Go Green, Grow Green campaign.
5: बेहतरीन आर्किटेक्चर की कोई बात करे और वो कतर का जिक्र ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए आज चलते हैं कतर के आर्किटेक्चरल सैर पर।
1: दोस्तों, ये है म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, जिसे फेमस आर्किटेक्ट आई एम पे ने डिजाइन किया है। बाहर से देखने में ये किसी ज्योमेट्रिक फोर्ट्रेस की तरह लगता है, लेकिन ध्यान से तो देखो, ऐसा लगता है जैसे बुर्का पहने कोई लेडी खड़ी हो। इसके अंदर जो दोहा स्काईलाइन का व्यू है, वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल है।
5: वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर देखो कतर का आर्किटेक्चर रेडियो ऑलिव की नजर से।
6: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे।

0: खत्म।
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Tanisha है आपके साथ। Olive Recharge चल रहा है। यहाँ पर इम्तियाज अली की मूवीज में जो वो थियोरीज दिखाते हैं, बेसिक लाइफ के यू नो फंडे होते हैं वो, वी ऑल आर गोइंग थ्रू दैट। उनमें से हमने रेड स्ट्रिंग थियोरी की बात करी, देन देर वॉज द सोलो ईटिंग थियोरी, एंड देन देर इज द लेट देम गो थियोरी। कभी कभी हेल्दीएस्ट थिंग यू कैन डू इज स्टॉप फोर्सिंग पीपल टू स्टे, एंड दैट इज सो ट्रू। आप किसी को ज़बरदस्ती रोकना चाहोगे ना तो वो बहुत फोर्स्ड फील करेंगे, वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील करेंगे, एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू गेट फ्री। सो इम्तियाज अली टीचर्स अस कि भाई जाने दो, लेट देम चूज, लेट देम बी। समटाइम्स लेटिंग गो इज सिंपली ट्रस्टिंग दैट वॉट इज मेंट टू स्टे इन योर लाइफ वोंट नीड टू बी फोर्स्ड। एंड हमें पता है ये चीज़ कि जो चीज़ को हमें फोर्स करना पड़ रहा है वो हमारे लिए है ही नहीं। तो अगर आप यू नो किसी जॉब में खुद को फोर्स कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें आपको यू नो बहुत फोर्स करना पड़ रहा है कि प्लीज़ स्टे विद मी, तो दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। ठीक है, इतना जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज नहीं तो कल वो बिखरने वाला है। हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ, बट दैट हैपेंस। सो दैट्स व्हाट इम्तियाज अली शोज अस सो ब्यूटिफुली इन द मूवीज। एंड इसमें एग्जांपल जब भी मेट का है जी, किस तरह से वो गीत को जाने देता है आदित्य, एंड बिकॉज दे वर मेंट टू बी, इवेंचुअली गीत कम बैक्स टू हिम। सो या, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इम्तियाज अली। ऑन दैट नोट, सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।
2: Radio Olive पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: This hour is brought to you by
3: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें। Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Oliver 106.3 FM. Oliver जा चल रहा है यहाँ पर और 1570 बार मैं आपको बता चुकी हूँ और 1570 बार बताऊँगी. टेंशन लेनी ठीक है. जल्दी से जाओ रेडियो ऑलिव का जो इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है उसे फॉलो कर लीजिए. रेडियो ऑलिव डॉट क्यू इज द हैंडल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन यूट्यूब बिकॉज यू कैन चेक आउट द इंटायर कॉन्वर्सेशन वी हैव विद आवर गेस्ट. बहुत बढ़िया बढ़िया गेस्ट आए हैं उन सबके साथ जो पॉडकास्ट हमने किए हैं वो पूरे पॉडकास्ट अगर आप यहाँ ऑन एयर मिस कर गए हैं तो आप वहाँ यूट्यूब पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं. ऑल्सो वी हैव अ पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म. जी हाँ लेजिट प्लेटफॉर्म. वहाँ पर आपको बहुत सारे अनसुने पॉडकास्ट भी मिलने वाले हैं हमारे. यस voicecast.live जाइए इस पर. ऐप भी है ऐप डाउनलोड कीजिए और वेन एवर यू वॉन्ट टू लिसन वट एवर टॉपिक यू वॉन्ट टू लिसन वट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट टू लिसन टू इट इन आपको सारे ऑप्शन वहाँ पर मिलेंगे. जल्दी से जाइए चेकआउट करिए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. See you, Bindas.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई
2: सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ
1: फुटवेयर गारमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स सब पर मैसिव सेविंग्स
2: क्लॉक इज टिकिंग ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक डोंट जस्ट शॉप स्कोर बिग आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर
3: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: ओलिव लगा और हो जा रिचार्ज
0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ

0: कमाल गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम दरीशा है आपके साथ ऑल ऑफ यू टॉक चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो गया मेरे जाने का मेरी जान सिमरनाती होगी आपकी इवनिंग को जबरदस्त बनाने के लिए आपने एक काम करना है अपना ढेर सारा ख्याल रखना है ठीक है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो इस बात को तो कभी भी नहीं भूलने का है ऑल्सो फॉलो अस इफ यू हैवंट और अगर कोई भी बात जहन में हो परेशान कर रही हो किसी को सुनाना चाहते हैं वेंट आउट करना चाहते हैं वी आर ह्यू फॉर यू यार हम सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पर 3311 1063 इज द नंबर मैसेजेस एनी टाइम यू कैन ऑल्सो कॉल 444-1063 पर और एकदम चकाचक मस्त वाले गाने तो यहाँ पे चलते ही रहते हैं बाय डिफॉल्ट तो सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मेरी जान
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour. Yeah.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: पे जस्ट 10% एडवांस एट जॉया लुकास टू बुक योर फेवरेट ज्वेलरी नाउ।
2: नाउ वी स्टिल हैव टाइम फॉर द फेस्टिव सीजन।
1: दैट्स एग्जैक्टली व्हाई यू शुड सिक्योर द बेस्ट गोल्ड राइट नाउ। बुक इन एडवांस एट जॉया लुकास एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advanced booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
0: You are listening to Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindas.

घंटे के लिए खोएगी क्योंकि चार घंटे अपनी है। मैं कह जी सोने होगी दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। सो ना, दो दिन पहले एक बात हुई और मैं आपको जो है वो बताना भूल गई। दो दिन पहले, कल की बात है या परसों की बात है, ठीक है, तो यही बात है। सो क्या होता है कि जब आप लोग लिसनर जो है कॉन्टेस्ट में जब पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे ऑफिस में टिकट्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए आते हैं, तो उनमें से हमारी लिसनर शिल्पा जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आई होप नाम सही है, मैं नाम बहुत भूलती हूँ यार। सो शिल्पा जी आई तो उन्होंने बोला कि मुझे सिमरन से मिलना है। सो मैं गई उनसे मिलने के लिए, वो मुझे देखते शी वाज सो हैप्पी, वो एकदम से खुश हो गई वो, और उन्होंने मुझे ज़ोर से हग कर लिया और एक मिनट तक उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। और हग जब मैं जब वो हग करने से हटी, उन्होंने एक बार फिर से हग कर लिया, ज़ोर से हग कर लिया। देन मैंने उनसे पूछा कि आर यू ओके, उनका रोना निकल गया। सो उन्होंने बार बार मुझे एक ही चीज़ बोल रही थी कि यार सिमरन, यार आपको नहीं पता है कि आप ना लाइफ में हमारे लिए क्या कर रहे हो, और आपको जब सुनते हैं तो हमको क्या फील होता है, और आप मतलब वो बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी। तो आप समझ रहे हो, अब आप लोग एक चीज़ समझो कि हम जो लोग हैं, हम जो आर्टिस्ट लोग हैं, इनफैक्ट वैसे तो हम सभी आर्टिस्ट हैं अपनी अपनी लाइफ में, है ना। सो हम जो आर्टिस्ट लोग हैं, हमको सैड होना अलाउड ही नहीं है अपनी लाइफ में। चाहे मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है, सो उसके बारे में मैं कभी बात नहीं करती। बट जब आप किसी से पूछते हो ना, या फिर कोई आके आपसे पूछता है आर यू ओके, तो फिर आप जो है वो अपने ऐसा होता है कि अपने वो हो जाता है कि छोड़ देते हो हथियार की यार किसी ने वाकई पूछा है। सो या लोगों से पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आर यू ओके, कैसा रहा आपका आज का दिन। यार 3311063 पर भेजो मुझे आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस। क्योंकि सैड तो हर कोई है यार लाइफ में, लेकिन मजा उसमें है कि आप कितनी खुशियां बांट सकते हो, कितने लोगों को खुश कर सकते हो, कितने

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
1: Mom, see what I bought today. I bought a tomato plant, a lemon plant, and a mango plant.
2: A mango plant? Isn't that a mango tree? Anyway, why is everything so green? Where did you get all this?
3: Arey, we went shopping at Safari, didn't we? Safari has launched the Go Green, Grow Green promotion. He got really excited when he saw all the plants and arrangements there.
1: Yeah, it's so cool, Mom. There's a lot of flowering plants too. I picked out the best ones.
3: He selected each one himself. There are plenty more. We can go together sometime.
4: A wide variety of vegetable and fruit saplings, medicinal and ornamental plants, indoor plants, various seeds, plus garden tools, fertilizers, and everything else needed for gardening. All arranged at Safari starting October 5th as part of the Go Green, Grow Green campaign.
5: बेहतरीन आर्किटेक्चर की कोई बात करे और वो कतर का जिक्र ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता आइए आज चलते हैं कतर के आर्किटेक्चरल सैर पर
2: नेशनल म्यूजियम ये यूनिक स्ट्रक्चर कोई स्पेसशिप नहीं बल्कि नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर है इसको आर्किटेक्ट जीन नोवेल ने डेजर्ट रोज से इंस्पायर होकर बनाया है ये इंटरलॉकिंग डिस्क्स कतर के पास्ट और फ्यूचर को जोड़ती हैं इन अ वे दैट्स कंप्लीटली फ्यूचरिस्टिक एंड ब्रेथटेकिंग
5: वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर देखो कतर का आर्किटेक्चर रेडियो ऑलिव की नजर से
6: सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव पे

0: करते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे

0: ते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: हाँ ठीक है।
1: हम सोच कर कहेंगे
0: हाय
1: हाय।
0: इसमें बॉबी देओल इतने क्यूट से और अभी तो ऐसे मतलब रोल करते हैं वो, थोड़ा सा देख के थोड़ा सा ऐसे आ जाता है कि यार जितने मासूम से वो करीब में लगते थे उतने अभी नहीं है। मैं रिसेंटली इनकी फिल्म काफी ज्यादा चर्चा में थी, फिल्म का नाम है बंदर, है ना। सो मैंने वो देखनी चालू की है, तो मेरा उस फिल्म के साथ ऐसा नाता है कि जब भी मैं खाना खा रही होती हूँ मैं उतनी ही फिल्म जो है वो देखती हूँ, 15-15 मिनट की फिल्म देख रही हूँ। लेकिन भाई साहब अलग लेवल की फिल्म बनी हुई है यार वो, अगर आपने नहीं देखी है तो बंदर देखिएगा, एकदम डिफरेंट टाइप की जो ये फिल्म है बॉबी देओल की। अभी फिलहाल डिफरेंट टाइप का मौसम हो रहा है,
1: बच के आना मेरी जान।
0: अगला गाना बहुत ही प्यारा गाना है यार, जियो बिंदास।

0: look us to book your favorite jewelry now.
1: Now? We still have time for the festive season.
0: That's exactly why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joyalukkas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joyalukkas app. Advanced booking offers valid until 7th November only. Joyalukkas, world's favorite jeweler.
2: अपने loved ones को पैसे भेजना हुआ और भी इजी. कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में. फास्ट, इजी और रिलायबल. विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद. बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालुकास. जोयालुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
6: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: ਸੋਹਣਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਆਪ ਸਭ ਕੇ ਮੈਸੇਜਸ ਕੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਯਾਰ,
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਵਾਟ ਦ ਵਾਇਰਲ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਆਰਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ।
0: एक रिसर्च ये कहती है कि 60% जो एडल्ट्स होते हैं ना, वो मतलब अपने दिन में हर 10 मिनट में किसी भी कॉन्वर्सेशन में जो है वो झूठ बोलते हैं। मतलब क्या है कि उनको जो है कोई भी उनकी कॉन्वर्सेशन होगी उसके बीच में उन्होंने झूठ बोलना जो है ना उनका बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होती है। यार यार ये 60% वाले पता नहीं कौन है, लेकिन मैं 40% वालों में से हूँ। मेरे से झूठ नहीं बोला जाता है, और अगर मैं झूठ बोल दूँ, कभी कभी होता है कि आप इंसान हो कि आप किसी चीज़ के लिए जहाँ पर चीज़ें गलत ना हो किसी के लिए आप कभी बोली, तो भाई मेरे को रात में नींद नहीं आती और मेरे को कन्फेस करना पड़ता है बाद में कि भाई ये मैंने ऐसे बोला था और इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे करके बोला था। लेकिन अब क्या होता है कि जब ये जो 60% लोग हैं, जब आप उनको कोई सच बात भी बताते हो ना, तो उनको वो बात झूठ लगती है, क्योंकि झूठे लोग हमेशा सामने वाले को शक की नज़र से देखते हैं। क्या बात बोली है सिमरन कौर, अपने लिए तालियां मैं खुद ही बजा लेती हूँ। अगले घंटे तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले घंटे आपके लिए फायदे का सौदा होने वाला है। ए हालो धूम के लिए आपको फ्री टिकट्स मिलने वाली है, तो गेट रेडी बेबी।
2: दिस इज लंदन एयरपोर्ट।

0: अखियां नू रहंदे अखियां दे गोल गोल, ये पुराना वाला गाना है, मुझे याद है मैं मेरी मम्मी से सुना करती थी। और उस गाने के ना लिरिक्स और उसकी धुन जो है, जिस तरीके से चाहे जितने भी बेसुरे तरीके से मैं गाती हूँ, लेकिन मुझे याद थी जब से ये दो पत्ती से ये गाना इन्होंने यू नो रीमेक किया है, इसके सुर मैं भूल गई हूँ, मेरे को यही वाले सुर याद रहते हैं। और यार कभी कभी कुछ कुछ मतलब जब ये गाना आया था रीमेक, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि क्या कर दिया गाने के साथ, सुनने में वाइब करती हूँ इस गाने के साथ, लेकिन वो पुराना जो ओरिजिनल वाला था उसका सुर भूल गई हूँ यार। मैं गिरी सोनी की दादी की हाल चाल सत श्रीकाल से उनको रहे थोड़े ना। सुर की बात करें तो कुमार सानू 90s, ओ माई गॉड। सो कुमार सानू की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनके बारे में पढ़ रही थी। 1993 में उनके नाम पे गिनीज वर्ल्ड जो था रिकॉर्ड हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक दिन में, एक सिंगल दिन में 28 गानों की रिकॉर्डिंग की थी। भाई मतलब उनको बोल रहे होंगे तब
1: रुक जा बेबी सांस

0: लगती रेडियो पे हूँ।
1: यार आज तो मैं क्या बातें कर रही हूँ यार। वापस लौट के तैयार हो जाइए, आपके पास मौका है फ्री टिकट जीतने का। ए हालो धूम।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
2: Fresh fish on the grill. Slow cooked mandi. Perfectly spiced prawns. And that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish. Crabs, prawns. Crafted with patience. Served with pride. Dana Dal Bahar. The ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Alkhor.
3: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में फास्ट इजी और रिलायबल विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ
4: बेहतरीन आर्किटेक्चर की कोई बात करे और वो कतर का जिक्र ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता आइए आज चलते हैं कतर के आर्किटेक्चरल सैर पर
1: कतारा विलेज कल्चर और आर्किटेक्चर का परफेक्ट ब्लेंड देखना है तो कतारा आइए यहाँ का ग्रीक स्टाइल एम्पीथिएटर और कतारा मॉस की ब्लू गोल्ड टाइल्स आपका दिल ही जीत लेंगी इस जगह के हर कॉर्नर में इतना डिटेल्ड काम है कि आपका कैमरा रोल पूरा फुल हो जाएगा
4: वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर देखो कतर का आर्किटेक्चर रेडियो ऑलिव की नजर से
5: Hi everyone, this is Benny Deol here. Benny Deol here. Olive Radio 106.3. Jio Bindaas.
6: Olive Suno Radio.

0: सबको पसंद है कड़क चाय मलाई मार्क। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: परफॉर्मेंस हो गया था मेरा, ट्रेडिशनल बीट्स एंड लाइव ऑर्केस्ट्रा जो है वो आप लोगों के लिए होने वाला है। भाई साहब, कभी कभी कहते हैं लेकिन केले की तरह जबान जो है वो फिसल जाती है, लेकिन सही तरीके से फिसले सही है, लेकिन अगर आपकी जबान ऐसे फिसल जाए जहां पर जो चीज आपको नहीं बोलनी है वो बोली जाए, वो गलत हो जाता है आपके लिए। सो अब देखो, फुल ऑन मस्ती के लिए आप लोग जो है वो तैयार हो जाओ। तैयार किस तरह से होना है? रिजेंसी हॉल जो है वो आप लोगों के लिए तैयार है इस 9 तारीख को हेलो धूम के लिए, राइट? सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वाइब चाहिए तो आप स्नूनू सिटी में जाके टिकट जो है वो बुक कर लीजिए, है ना। सो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रही हूँ, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगी। नंबर है 3328339 3, एक बार वापस से बोल दी हूँ, 3328339 3, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड अब आपको दो तरीके बताती हूँ फ्री टिकट जीतने के। एक तो आप रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उस वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए, शेयर करिए और अपने 3 फ्रेंड्स को टैग करिए। आपके पास मौका है इस हालो धूम की टिकट जीतने का। और एक अभी सिमरन कौर का शो सुन रहे हैं आप, बिल्कुल, तो फिर आपके पास मौका है ए हालो धूम की टिकट जीतने का, जहां पर आपको देसी म्यूजिक मिलेगा, लाइव परफॉर्मेंस मिलेगी, बहुत ज्यादा मजा जो है वो आने वाला है, क्योंकि इसमें गाने वाली है इशिता विश्वकर्मा, बॉलीवुड की सेंसेशनल सिंगिंग स्टार। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने मुझे एक वॉइस नोट भेजना है 15-30 सेकंड के अंदर, ये आपने बोल के बताना है कि आप ये कपल टिकट क्यों डिजर्व करते हो। सो आप अपने साथ किसी को भी लेके जा सकते हो, अपने दोस्त को, अपने पार्टनर को, घाघरा वागरा पहन के आना है, मस्त वाइब सेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं आना है, ठीक है? तो करेंगे अपन मस्त डांस, और भेज दो 3311063 पर। हे सिमरन, अपना नाम बताइए और अपना रीजन बताइए कि आप ये कपल टिकट जो है वो क्यों जीतना चाहते हैं, ठीक है? सुनते रहिए रेडियो ऑलिव गोल गेदर, ये जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

को कमीना बोलना इश्क अच्छी चीज है, लोग इसमें थोड़ा सा वो कर देते हैं जो कि इश्क को बोला जा रहा है। मैं क्या नहीं सुनियो की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ। इश्क अगर आपको है डांस से, अगर आपको देसी बीट से, लाइव ऑर्केस्ट्रा से अगर आपको मोहब्बत है, सो आपके लिए तैयार है रेडियो ऑलिव एंड ए टू जी जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये एक बढ़िया वाली म्यूजिकल नाइट ए हालो धूम, जी हाँ, जिसमें आने वाली हैं यू नो इशिता विश्वकर्मा, जो कि मतलब बहुत ही कमाल का गाती हैं। सो वो लाइव आपके लिए गाएंगी, लाइव म्यूजिक भी होगा। सो ये सब कहाँ पे होने वाला है, कब होने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ। इस 9th अक्टूबर को दोपहर शाम 6:30 बजे के अराउंड जो है वो डोर्स वगैरह खुल जाएंगे, है ना। सो आपको आना है रिजेंसी हॉल में, लेकिन उससे पहले आपको टिकट्स बुक करवानी होगी। स्नूनू सिटी में जाके आप टिकट्स बुक करवा सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन अगर आप फ्री टिकट जीतना चाहते हैं तो रेडियो ऑलिव का सोशल मीडिया, रेडियो ऑलिव के शोज ध्यान से सुनिए, आपको मिलेंगी टिकट्स। अगर आप अभी रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाएंगे, वहां पर हमने एक वीडियो डाला है, आप फ्री टिकट जो है वो जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं तो आप अभी के अभी एक काम करिए, मुझे एक वॉइस नोट भेजिए, विद इन 15 to 30 seconds आप मुझे एक रीजन दीजिए कि आपको ये कपल टिकट क्यों मिलनी चाहिए ए हालो धूम की। फटाफट से 3311063 पर सिमरन कॉलवानी एनर्जी होनी चाहिए। हे सिमरन, फिर अपना जवाब दीजिए, ठीक है, इंतजार कर रही हूँ। वॉइस नोट डार्लिंग, और प्लीज वो आइडिया मैं घिसे पिटे मत लेके आना यार, थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ यार।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ. सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर. गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स, क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ.
1: फुटवेयर, गार्मेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेडीज बैग और हाउस होल्ड आइटम्स, सब पर मैसिव सेविंग्स.
0: क्लॉक इज टिकिंग. ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक. डोंट जस्ट शॉप, स्कोर बिग. आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर.
2: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर. You are listening to Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.

क्या कहूँ यार मैं किसी सोने को दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। सो अपने स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड जो है उनका ये कहना है कि जिंदिया जो है ना वो उनको दिन में कम से कम 100 मीम्स भेजती है। मुझे लगा था कि हम आपस में दोस्तों का चलता रहता है, इतनी सारी रील्स इतने सारे मीम्स भेजते रहते हैं भाई, लेकिन 100 तो मैं फिर भी नहीं भेज पाती हूँ यार। अगर मेरे को आ भी जाए तो मैं देख नहीं पाती हूँ, लेकिन वो कैसे मतलब इस चीज को एडजस्ट करते होंगे कि भाई जिंदिया उनको भेज रही है मीम, लेकिन वो भी तो स्पाइडरमैन है यार। सो यार क्यूट यार, ये भी एक मुझे लगता है कि इन टच रहने का एक तरीका होता है, क्योंकि आप 24/7 बात नहीं कर सकते हो ना किसी से, 24/7 जो है वो मैसेजेस वॉइस नोट नहीं भेज सकते हो, लेकिन रील भेजना मुझे लगता है एक ऐसा कनेक्शन होता है कि आप जैसे रील आती है आपके दिमाग में वो नाम पॉपअप होता है, आपके यू नो जहन में आती है उसकी फोटो और आप देख के मुस्कुरा देते हो यार इसने मेरे को रील भेजी, चाहे आप बाद में ही देखो यार।

रियल बडी कौन है? जिसको आप रील भेजते हो वो आपको रील भेजता है। पर सोचो और अपनी लिस्ट में आपको अभी याद भी होगा और दिख भी जाएगा कि आप सबसे ज्यादा रील्स और मीम्स किसको भेजते हो।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: बेहतरीन आर्किटेक्चर की कोई बात करे और वो कतर का जिक्र ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए आज चलते हैं कतर के आर्किटेक्चरल सैर पर।
2: एजुकेशन सिटी मॉस्क। दोस्तों ये कोई ऑर्डिनरी मॉस्क नहीं बल्कि एजुकेशन सिटी मॉस्क है जिसे मंजेरा इवार्स ने डिजाइन किया है। इसका फ्यूचरिस्टिक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर इस्लाम के पांच पिलर्स को रिप्रेजेंट करने वाले पांच बड़े कॉलम्स पर टिका है। इसके दो 90 मीटर हाई मीनारे सीधे आसमान की तरफ पॉइंट करते हैं। ट्रूली अ मास्टरपीस ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी।
1: वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर देखो कतर का आर्किटेक्चर रेडियो ऑलिव की नज़र से।
3: Guys, this is Abhar Chetty Khurana aur aap mujhe sun rahe ho Radio Olive.
4: के स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी। नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, prawns crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: वाला प्यार इस गाने के साथ बहुत सारे लोगों की मेमोरीज जो है वो जुड़ी हुई है। 7:33:45 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: बहुत ही वेरी चीज कल मैंने पढ़ी थी। कहते कि आपका जो माइंड है ना वो एक मैग्नेट की तरह है। अगर आप जो है ब्लेसिंग के बारे में सोचोगे, अच्छी चीजों के बारे में सोचोगे, तो आप अच्छी चीजें जो है, ब्लेसिंग्स जो है वो अट्रैक्ट करोगे। लेकिन वहीं अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे, मेरी जिंदगी में ये हो गया, मेरी जिंदगी में हो गया, मेरी जिंदगी ये वो, तो वो सारी चीजें आप अट्रैक्ट करते रहोगे। सो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, मुझे खुश रहना बहुत अच्छा लगता है। लाइफ में चाहे जितनी मर्जी भसड़े मची हो, ऑफकोर्स अंदर से इंसान डाउन होता है, आप 24 घंटे नहीं स्माइल कर सकते हो, है ना। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि अपने आप को खुश रखूँ। भसड़े तो हर किसी की जिंदगी में चलती रहती है, लेकिन आप जिंदगी कैसे जीते हो डिपेंड करता है। बस आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि आई एम श्योर आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होगा, खुश रहने की कोशिश करो यार। वापस लॉर्ड की नेम गेम खेल रही हूँ।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. A Halo Dho with Radio Olive and A to Z Event and Trading Catering.
1: Doha Walo, get ready to glow, glam up and groove. We are bringing you the ultimate fashion fusion musical night. Throw on your brightest, most colorful festive ethnic wear, grab your favorite accessories and let's light up the dance floor.
0: Aur ultimate music ke liye saath hogi Bollywood ki sensational star Ishita Vishwakarma Lal.
1: Get ready for Desi Beats, Chatpate Street Food and full-on vibes this Friday, 9th October at Regency Hall,
0: 6 PM onwards.
1: Book your ticket on Snoonu City or for more info, call 3328-3393.
2: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद. बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
6: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

इतना सारा प्यार तुम तो रहोगी मेरी स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। मतलब ना कभी कभी हमारे लिसनर से जब हम मिलते हैं ना तो हमको ये बोलते हैं, अरे आप एकदम आरजे की तरह बोल के बताओ ना यार। वो सिचुएशन इतनी ज्यादा अजीब होती है जब कोई चाहता है। वो अलग बात है कि जब हमारे लिसनर्स मिलते हैं बहुत ही प्यार से हमको मिलते हैं, लेकिन जब वो ये वाली बात बोलते हैं ना लिटरली मेरे को नहीं समझ लगता मैं क्या करूँ, क्योंकि वो बड़ा ऑड हो जाता है यार। चलो अभी आप लोगों के नाम बोले। क्विकली आप मुझे अपने नाम लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप का नंबर हम बता देंगे यार, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311106 3। जी हाँ, 3311106 3। इस नंबर पे आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजना है। अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम देखेंगे वो सारे नाम मैं बोलूंगी। इदरीस जी, अरिजीत जी, अब्दुस समद जी, थैंक यू सो मच। आसिफ जी, थैंक यू सो मच। वाजी जी, थैंक यू सो मच। फारूकी जी, थैंक यू सो मच। सबीर जी, थैंक यू सो मच। आशीष जी, थैंक यू सो मच। प्रेम जी, थैंक यू सो मच। श्वेता जी, थैंक यू सो मच। अफजल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाद्रिक जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सिद्धार्थ जी, थैंक यू सो मच। विलियम जी, थैंक यू सो मच। सफदर जी, थैंक यू सो मच। जसीम जी, थैंक यू सो मच। हुजैफा जी, थैंक यू सो मच। फातिमा यूसुफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। कामरान जी, थैंक यू सो मच। डेन, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। दोस्तों जो अभी अभी जिन्होंने ऑन किया है व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेज दो, मैं आपका नाम बोल दूंगी 3311106 3 पर। हार्दिक जी, थैंक यू सो मच। महबूब जट जी, थैंक यू सो मच। अबनेर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। जैनब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। हरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सौजन्या जी, थैंक यू सो मच। तीरथ प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सेंसिया जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। सफदर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। खिजर हयात खान जी, थैंक यू सो मच। हबीबी लिख के भेजा किसी ने, थैंक यू सो मच जी। अतर आबाज जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के नाम ले लिए बेटा मैं माइक घुमा लूँ, अब थैंक यू बोल दो ठीक है, और अपना फेवरेट वाला इमोजी भेज दो। मोहित चौहान की आवाज में बहुत ही प्यारा गाना यार, तेरे बिना मैं क्या जब तू सजन मेरे पास में है। कुछ और ना चाहे अकिया, यही होता है मेरे साथ, इमोशंस के साथ बोलती हूँ लिरिक्स भूल जाती।

0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: बेहतरीन आर्किटेक्चर की कोई बात करे और वो कतर का जिक्र ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए आज चलते हैं कतर के आर्किटेक्चरल सैर पर।
2: दोस्तों, ये है म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, जिसे फेमस आर्किटेक्ट आईएम पेई ने डिजाइन किया है। बाहर से देखने में ये किसी ज्योमेट्रिक फोर्ट्रेस की तरह लगता है, लेकिन ध्यान से तो देखो, ऐसा लगता है जैसे बुर्का पहने कोई लेडी खड़ी हो। इसके अंदर जो दोहा स्काईलाइन का व्यू है, वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल है।
1: वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर देखो कतर का आर्किटेक्चर रेडियो ऑलिव की नजर से।
3: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू
4: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल 8:15 और 40 सेकंड हो चुके हैं और अब हम खेलने वाले हैं
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: चलो फोन का रिकॉर्डर ऑन कर सकते हो, अगर आपको 2-4 बार सुनना है तो सुन सकते हो अपनी मर्जी से, है ना, लेकिन इतना पहचानना मुश्किल होगा नहीं इसको। बताओ जी ये कौन सा गाना आपको लग रहा है, वॉइस नोट के थ्रू ही जवाब देना, लिख के मत भेजिएगा, आपको पता ही है यार रूल्स। सो रिकॉर्ड करिए वॉइस नोट, हे सिमरन अपना नाम बताइए, गाने का नाम बताइए या गाके बताइए और भेज दीजिए 3311063 पर। एक बार फिर से सुना देते हूँ, सुंदर ये रेडियो ऑलिव पर कह दे जी ओविंदास
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਪ੍ਰਮਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ।
2: ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ।
0: ਔਰ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਸੌਂਗ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਲਾ ਥਾ। अब आप लोगों के जवाब जो है वो सुनते हैं।
3: हाय सिमरन, ये गाना है किताबे बहुत सी पढ़ी होगी तुमने। दिस इज ज़हीर यार।
0: हाय ज़हीर।
4: हे सिमरन, दिस इज सैयद नमन। आपने जो गाना सुनाया वो किताबे बहुत सी।
0: ओके।
4: बाजीगर मूवी से।
0: थैंक यू जी। हाँ जी।
5: हेलो, मेरा नाम रहमत है।
0: हाय रहमत।
5: ये बाजीगर मूवी का गाना है।
0: ओके
5: जी। किताबे बहुत सी पढ़ी होगी तुमने।
4: हाय सिमरन।
0: हाय।
4: हाउ आर यू?
0: गुड यार।
4: किताबे बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी। This is the song.
0: Thank you so much. चेहरे तो पढ़ते हैं यार।
6: Hi सिमरन, this is Hasan Khan. कैसे आप? ठीक हो?
0: बहुत बढ़िया दोस्त।
6: ये जो आपने टोन सुनाया है ना, पता नहीं मैं ठीक बोल पाऊंगा कि नहीं, पर सही आता नहीं है, पर ये है किताबे बहुत सी पढ़ी हो कि तुमने, मगर कोई चेहरा। बस इट सेट, आई डोंट नो।
0: क्यूट हो यार आप सब। सही फरमाया आपने, ये वही गाना है। थैंक यू सो मच यार। अच्छा बाहर जरा देखो, उस चांद को तकते तकते कभी ये भी थॉट आता होगा।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਬ ਗਲਤੀ ਮਾਨੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਕੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਗਾਣੇ लाइफ में इस दिल में इस जिंदगी में जो मर्जी होता रहे लाइफ और जिंदगी एक ही चीज होती है सिमरन कौर दैट्स ओके यार लेकिन हर चीज को
1: हंस के जाने दे नए कल को आने दे
0: चलो फिर आज के दिन को जो है वो हंस के जाने देते हैं और कल नए दिन को आने देते हैं कल शाम को 5 बजे फिर से होती है जबरदस्त इवनिंग्स में आपसे मुलाकात टिल देन खाने पीते रहो ऐश कर दे रो चेहरे दे बड़े वाली स्माइल रखो किसी का दिल मत दुखाना बी नाइस टू एवरीवन यार गुड नाइट जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर किलो

Solid 106.3 FM Gio Bendaz. Listening to Radio Olive 106.3 FM Gio Bendaz.

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।